0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 5:04 हो चुके हैं और हमारे दोस्तों कैसे हो आप सब. मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आप ठीक होंगे अपने अपने घरों में. और ये टाइम जो है ना ये है मस्ती वाला, जहाँ पे आपको अगर बहुत सारा मस्ती चाहिए, प्यार चाहिए, दिन में ढेर सारे आपको सपने पूरे करने हैं, कुछ बड़ा करना है, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले बिस्तर से उठना है और उठकर ये पुराना जो पूरे सपने करने हैं उसको करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़ना है और हमारे साथ बहुत सारी बातें करनी है. 5499124 जो नंबर आपको पता ही है. तो हम तो यही कहते हैं उठिए, मुस्कुराइए, चाय बनाइए और अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से कीजिए. मैं हूँ आपके साथ पूनम.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पाँच बजकर 14 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे हम शाइन शाइन करते हुए आपको बस बोलते हैं वेट कीजिए, अभी राइज हो जाएगा हमारा प्यारा सा सूरज। तो भाई यही है टाइम, जिस टाइम कई बार हम सोचते हैं कि आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कई बार हम सोचते हैं अरे इस वीक बहुत अच्छा होगा, कई बार सोचते हैं इस वीक अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई हमारा ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे को उम्मीद रखती है, हमें एक उम्मीद होती है अपने आप से, अपने स्टार्स के साथ में और अपनी ज़िंदगी के साथ में। तो हम तो यही बोलते हैं उम्मीद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं या बॉलीवुड है, ये हमारे को बहुत अलग अलग मूवमेंट्स के लिए बहुत सारे गाने देता है। तो ये जो गाना नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको उम्मीद हो जाएगी भाई ये हमारा जो वीक है वो कैसे जाने वाला है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, और हम तो यही बोलेंगे अगर आपको भी कोई मैसेज करना है दिल से कोई जुड़ा हुआ तो ज़रूर कीजिए 5499124 पर। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को जो कि थी मन्ना डे की आवाज़ में और राज मूवी से, और जिनको मस्ती कर रहे दिल करेगा ना डांस करने का वो भी कर सकते हैं।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:22 हो चुके हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मस्ती आ रही होगी, इंजॉय कर रहे होगे ये गाने। ये बहुत पुराने गाने हैं पर ये गाने जो है ना, इनकी एक अलग सी ही वाइब होती है। तो हम तो आपको ये कहते हैं RM2 रेडियो मस्ती, जो कि 24 आवर्स आपके साथ रहता है, सभी आरजेस आपके मूड को बनाए रखते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे, आपके मैसेजेस रुकने नहीं चाहिए। तो आपको मैसेज भेजना है कैसा लग रहा है 5491294 पर। चलिए जी बात करते हैं, आज है रंजीता कौर जी का जन्मदिन। आपको याद है रंजीता, वो एक एक्ट्रेस जिन्होंने 70s में और 80s के दशक में बहुत खूबसूरत मूवीज़ दी, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, जिन्होंने डिफरेंट ऑरा, जिन्होंने अपना जो कॉस्ट्यूम लेवल था वो बिल्कुल डिफरेंट किया था, जो कि स्पेशली आपको याद होगा लैला मजनू मूवी में 1976 में ये मूवी आई थी, इन्होंने काम किया था ऋषि कपूर जी के साथ, सुपरहिट मूवी दी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। इतने सालों के बाद एक ऐसी कलाकार ने एक अलग ऐसा ऑरा दिखाया कि बस सभी लोग ने कहने लगे कि ये जो मूवी है बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद उन्होंने बनाई थी अखियों की झरोखों पे, ये बहुत ही मूवी चली, यहाँ इनके साथ में सचिन थे। और फिर आई सत्ते पे सत्ता, जो कि बहुत ही खूबसूरत मूवी बनी थी, जिसमें थे अमिताभ बच्चन साथ में। और उसके बाद उन्होंने 21 मूवीज बनाई, आपको पता है, सिर्फ मिथुन दा के साथ, जो कि नॉर्मली सारी ही सुपरहिट रही। तो हम तो उनको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंजीता जी, बट वो कहाँ हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। अगर किसी भी मौके पर वो सुन रहे हो तो हम तो यही कहेंगे, एक ही बात हमेशा जो सबके लिए कहते हैं, दिस इज स्पेशली फॉर जिन जिन का आज बर्थडे है।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:31 हो चुके हैं दोस्तों। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही पुराने दिन याद आ जाते हैं। स्कूल के दिन, दोस्तों की बातें, वो टाइम जहाँ पे बॉलीवुड बस स्टार्ट ही हुआ था, मतलब कलर लाइफ स्टार्ट हुई थी, और वहाँ के जब दिन याद किए जाते हैं तो एहसास होता है कितने अच्छे वो दिन थे। पर फिर भी क्या करें, जो आज के दिन है, कहते हैं ना प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में और फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोचते नहीं रहना चाहिए। तो हम तो प्रेजेंट में इतना ही आपको कहेंगे। जो आपके मैसेजेस हैं इनको कैसे भूलें भाई, बिल्कुल नहीं भूल सकते। प्रेजेंट में तो हमारे सामने इतनी बड़ी लिस्ट है। तो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं टोनी जी, और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और सभी के लिए कह रहे हैं आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहें। क्या बात है, थैंक यू सो मच टोनी जी, आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए और हमेशा खुश रहें। सुरेश शर्मा साजदा जी साथ जुड़े हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ में और इन्जॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच सर, इन्जॉय करते रहिए। अब्दुल एंड सायरा बानो विश कर रहे हैं नसरीन शकील एंड केशव को, और उन्हें कह रहे हैं कि आप फिलिंग स्टेशन में काम करते हो, सबको पेट्रोल देते हो, डीजल देते हो, पर हम आपके लिए चाय लेकर आएं क्या? अरे ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकर जाइए लेकर जाइए, और हमारे लिए भी लेकर आइए। तो हम तो यही कहेंगे अब्दुल एन सारा बानो, इन्जॉय कीजिए अपने दिन को और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जयशन जी साज हॉस्पिटल से साथ दे रहे हैं। टिम्बा उमरियान जेबून अंगूठिया आकाश दानो श्रवण मेविन सभी के लिए विश कर रहे हैं, और सभी पेशेंट्स के लिए कह रहे हैं कि अगर आप भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इन्जॉय करते रहिए, थैंक यू सो मच जयशन। दीपक जी साथ दे रहे हैं और अपनी वेदू के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेज लेकर आए हैं, और कह रहे हैं सभी बहुत अच्छे लोग हैं, ज़िंदगी ऐसी सबके साथ गुजर जाए तो और क्या चाहिए, थैंक यू सो मच। सुंदरी वेसेन अरुमाई वेसिन सिवियान कल्याणी एंड वीरा स्वामी जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाएंगे हम। साथ में हमारा साथ दे रही हैं मालिनी जी, और इतने सारे दिल भेजने के लिए थैंक यू सो मच, इन्जॉय कर रही हैं, थैंक यू सो मच, इन्जॉय करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आप सबके साथ है। मालिनी डैरन श्वेता रवीश प्रशाल उवेश आबादू फैमिली रोशनवा से साथ दे रहे हैं।

0: इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में सुन पाएंगे एक प्यारा सा गाना और उसके बाद में चलेंगे हॉरोस्कोप की तरफ।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
2: 5:45 हो चुके हैं दोस्तों। आज की सुबह अपने साथ कुछ अच्छे मौके, नई उम्मीदें और अपनों का प्यार लेकर आई है। तो चलिए एक प्यारी सी सोच के साथ जानते हैं आज आपकी राशि क्या कहती है। सबसे पहले
3: एरीज मेष राशि।
2: आज आपका उत्साह किसी नए काम को आगे बढ़ाएगा। आपकी एक अच्छी पहल से किसी को मदद मिल सकती है। परिवार के साथ थोड़ी हंसी खुशी भी बांटिए। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 5।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज पैसों से जुड़ी कोई अच्छी योजना बन सकती है। किसी के घर में कोई सलाह देने वाला आ सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग, तो आप उनकी सलाह जरूर मानिए। अपनी पसंद का नाश्ता करके घर से जाइएगा, ऐसे खाली पेट बिल्कुल मत जाइएगा। एंजॉय कीजिएगा अपने दिन को। लकी कलर बनेगा आपका हरा, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज आपकी बातचीत किसी नए अवसर का रास्ता खोल सकती है। पढ़ाई में कोई मुश्किल सवाल समझ आने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप अपने बड़ों से, किसी प्रोफेसर से, टीचर से ज़रूर उसको पूछिए। हो सकता है वो स्कूल में आए, वो आपके एग्ज़ाम में आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज आपका दिन तभी बनेगा अच्छा जब आप अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे और स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन आराम से आपसे पूछ सकेंगे। अपने किसी पुराने दोस्त से कोई ना कोई अपनी मदद ज़रूर लेते रहिए। लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 3।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: आज परिवार में किसी की खुशी आपको भी खुश करेगी। कोई आप चीज़ व्हीकल ले सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई ऐसा जिसकी बहुत समय से इंतज़ार में थे आप। आज आपका वो दिन है, तो आपको अपने लोगों की ज़रूरतों के साथ साथ अपनी पॉकेट की भी ख्याल रखना है और अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। लकी कलर बनेगा वाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि।
2: आज अपनी कोई खास कला सामने लाने का मौका मिलेगा। आपकी बातों में किसी का हौसला बढ़ सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ कुछ प्यारे पल बिताइए। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि।
2: आज कोई अधूरा काम पूरा करके आपको खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा रह सकता है। अपने दिन में थोड़ा सा संगीत और थोड़ा सा आराम साथ में शामिल जरूर कीजिए। अच्छा खाना खाइएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
3: लिब्रा तुला राशि।
2: आज किसी अपने से मिली अच्छी खबर दिल खुश करेगी। काम में आपकी समझदारी लोगों को पसंद आएगी। किसी खास इंसान के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
2: आज आपका कोई नया विचार काम में उपयोगी हो सकता है। किसी जरूरी फैसले में आपकी समझ मांगी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर कोई अच्छी एडवाइस दीजिएगा। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का बिल्कुल टाइम है, तो आप टाइम भी निकालिए उनके लिए और अपने लिए भी। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 8।
3: सजिटेरियस धनुराशि।
2: आज कुछ नया सीखने को मन करेगा। किसी छोटी यात्रा या मुलाकात से आपका दिन बनेगा। आपको खुशी मिलेगी। अपने उत्साह के आसपास लोगों को भी उत्साह बढ़ाते रहिए।

0: अगर किसी को कुछ चाहिए तो आप आज मना मत कीजिएगा, हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत दूसरे इंसान को बहुत हो। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी लगन किसी अच्छे परिणाम की ओर आपको लेके जा रही है। बचत करना बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, आपसे वो बस सिर्फ समय की मांग कर रहे हैं। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 5।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज दोस्तों के साथ कोई अच्छी योजना बन सकती है। काम में नया तरीका लोगों को पसंद आएगा। किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद जरूर कीजिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज कोई प्यारी याद आपके चेहरे पे खुशी लाएगी। पढ़ाई या आपके ऑफिस में आपकी पसंद को पसंद किया जाएगा। आज ऑफिस में भी हर कोई आपसे बहुत खुश रहेगा। और अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा आज पढ़ने वाले हैं। किसी अपने का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और दिल से आज आप खुश रहेंगे। तो ये बनेगा आपका लकी कलर पिंक कलर, लकी नंबर है 3।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Masti.
0: तो दोस्तों ये था आज आपका हॉरोस्कोप। आगे एंजॉय कीजिए अपने गानों को और अपने पूरे शो को।
3: हैया हैया, आ हैया हैया।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 से बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। मुख्य मुद्दों में नए महासचिव का चुनाव, जलवायु बदलाव और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम शामिल हैं। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात में 7% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं में गर्भधारण से जुड़ी परेशानी का खतरा 40% से अधिक हो सकता है। 7 युवा मर्शन अक्टूबर महीने में सिंगापुर में होने वाली स्टेम रेसिंग विश्व प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पहली बार है जब अफ्रीका इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। कृषि उद्योग मंत्रालय बीज और फलदार पौधे तैयार करने के लिए छोटे किसानों को बढ़ावा दे रहा है। पहली योजना से 27 किसान जुड़ेंगे। इसके लिए 8 मिलियन रुपए रखे गए हैं। विदेश स्तर पर यमन में लड़ाई के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के शरणार्थी शिविर में पनाह ली है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। मौसम की जानकारी। पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह के दौरान रह रहकर बरसात होगी। शाम को देश के पश्चिम में बरसात जारी रहेगी। अन्य जगहों में बादल घिर रहेंगे। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम खराब ही रहेगा और बादल घिर रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस

0: के बीच सूर्योदय 6 बजे सूर्यास्त 6 बजकर 5 मिनट पर।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। मुझे पता है बहुत सारे लोग उठ गए होंगे, चाय बन गई होगी, रेडी हो गए होंगे, बिल्कुल जाने के लिए तैयार बैठे होंगे और सोच रहे होंगे फटाफट से हमारा कोई मैसेज पढ़ दो, क्योंकि बहुत सबके लोगों के कुछ ना कुछ दिल से निकली हुई बातें होती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं रवीना जी की तरफ। विश कर रही हैं विजय बुधू, जिनको जिनका आज बर्थडे है, फ्रॉम श्रिया, आकाश, वरुण एंड होल फैमिली, और उन्हें विश कर रही हैं, बस इतना ही कह रही हैं, आपकी लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहो, इंजॉय करो, आज आपका ब्यूटीफुल डे है। क्या बात है जी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सारी विशेज आपके लिए। अनीता जी के पिप से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। धनेश्वर जी अपनी पूरे परिवार, अपनी पत्नी के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और थैंक यू सो मच। आप सबका जब मैसेज आता है दिल को खुशी मिलती है। ललित जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और अपने सभी दोस्तों के साथ में अपने स्टाफ को इतना ही बस कह के डायरेक्शन दे के बैठे हैं, चलो प्रोग्राम सुनना है उसके बाद घर जाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। स्वयं कालू जी का आज बर्थडे है, स्पेशली मेलिजिन जी की तरफ से बेस्ट विशेज हैं। बिंदिया, डैड, सोना, सनी, ग्रैंड मामा, ग्रैंड पा, चाचा, चाची एंड पूरी होल कालू फैमिली की तरफ से बहुत सारी विशेज आई हैं आपके लिए सर। हमेशा खुश रहें, इंजॉय कीजिए, प्यार बना रहे आपका सबका एक दूसरे के साथ में। आज फिया भिखारी जी जी का भी जन्मदिन है, उनके हस्बैंड बहुत ही दिल से मैसेज किया है उन्होंने और इतने सारे दिल भेजे हैं बस अपनी वाइफ के लिए, और कह रहे हैं बॉबी, अनीश, अनीशा, मामा, बसंती, रवि, उषा, सनी, मीनाक्षी की तरफ से बेस्ट विशेज, और कह रहे हैं बस ये बताओ पार्टी क्या चाहिए। पार्टी तो सर हमसे भी पूछो कि पार्टी पे कहाँ चलना है, सारे जनों को लेके चलिए। सारा मॉरिशस आपको विश करता है, मैम विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं बहुत ही प्यार भरे मैसेज के साथ में, अपने पूरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बेस्ट विशेज लेकर आई हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को। पर हम कहाँ जाने वाले हैं बिना ये चलाए कि आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहे, खुश रहें। जिनका भी आज बर्थडे है उनको बेस्ट विशेज पूरे आरएम रेडियो मस्ती की तरफ से।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:19 हो चुके हैं दोस्तों और आज है एक स्पेशल डे जिसे कहा जाता है वर्ल्ड कार फ्री डे, यानी कि एक दिन जहां पर आपको कार छोड़ देनी है, पैदल चलिए, साइकिल पर जाइए, बस पे जाइए, मेट्रो पे जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो एक घंटा अपने आप को दीजिए जहां पे थोड़ी सी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, बस चाबी को डालिए जेब में, थोड़ा सा वॉक कीजिए, चलते जाइए। और अगर आपको पता है कि आपको ऑफिस जाना है और कार में ही जाना है तो ज़रूर जाइए, पर जब घर वापस आएंगे तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, वॉक करना, क्योंकि ये जो डे होते हैं ना इसको याद दिलाने के लिए होते हैं कि आप इन चीज़ों को भूल ना जाएं, क्योंकि कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा जब मिल जाता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो हम तो यही कहते हैं थोड़ा सा कोई ट्रिगर मिल जाए एक दिन के लिए और उसके बाद आप बोलो कि खुद से, अरे हाँ वहाँ मैं गया था ना तो मुझे बड़ा रिलैक्सेशन मिला, मैं वॉक करता रहा, पैदल चलता रहा, और कल फिर जाएंगे, परसों फिर जाएंगे, यही तो चाहिए होता है। ये डे इसीलिए बनते हैं कि बस चाबी को डालिए पॉकेट में और बस चलते जाइए, इंजॉय कीजिए गाने को।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: समाचारों में आपका स्वागत है। नमस्कार, सुबह के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ये नया दिन आप सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र शुक्रवार तक चलेगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलान मितौबान भी न्यूयॉर्क में मौजूद। एमबीसी से बातचीत में मिलान मितौबान ने इस बार की महासभा के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा कम हुआ, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अभी काफी अधिक। एक महीने में आयात 9.4% घटकर करीब 30.4 बिलियन रुपए रह गया। यमन में लड़ाई तेज होने के बाद हजारों लोग जान बचाकर पड़ोसी देश जिबूती पहुंच रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका इन समाचारों में। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र शुक्रवार तक चलेगा। मॉरिशस की ओर से विदेश मंत्री रितेश रामफोल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि कुछ अहम चेहरे नजर नहीं आएंगे। इससे दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की भी एक तस्वीर सामने आती है। प्रणव बिहारी और गीता सुनारा।
1: सबसे पहले बात उन नेताओं की जो इस बार मौजूद नहीं रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में कभी शामिल होने नहीं गए हैं। इसे रूसी और चीनी राष्ट्रपतियों की ओर से एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले कुछ दूसरे मंच ज्यादा उपयोगी हैं। जैसे दोनों नेता 10 दिन पहले भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। कुछ नेता अपनी मर्जी से अनुपस्थित नहीं हैं। फलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीजा नहीं मिला है। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल उन्हें वीजा देने से इनकार किया है। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इस महत्वपूर्ण बैठक में जरूर शामिल होंगे। इनमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति आज महासभा को संबोधित करने वाले हैं। पिछले साल उन्होंने अपने संबोधन में बहुपक्षीय सहयोग की कड़ी आलोचना की थी। इसके विपरीत इमानुएल माक्रों मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद उन्हें वीजा देने से इनकार नहीं किया गया है। एक और संघर्ष है यूक्रेन में चल रहा युद्ध। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात करने की घोषणा

0: घोषणा भी की है। वहीं मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल शुक्रवार को महासभा को संबोधित कर सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग रखेंगे।
1: करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। तो विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलान मितौबान भी न्यूयॉर्क में समय मौजूद है। बीसी से बातचीत में मिलान मितौबान ने इस बार की महासभा के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया। इनमें अंतोनियो गुटेरेस की जगह संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव का चुनाव अहम रहेगा। मॉरिशस के लिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चा भी खास मायने रखेगी। इसके अलावा दुनिया भर में AI के इस्तेमाल के लिए बेहतर नियम बनाने पर भी बात हो सकती है। इस मुद्दे पर कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए जा सकते हैं। मिलान मितौबान को सुनते हैं, उनसे बात की काविंता पेसौ ने।
2: En principe, avant la fin de l'année, l'élection d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et ça, évidemment, c'est une question majeure qui préoccupe tout un délégué pendant les prochaines semaines. On connaît la question de l'eau. Vient une question très importante pour la communauté internationale et non une conférence que les Nations Unies peut organiser en décembre à Abu Dhabi. Le délo, en principe, il y a une norme de résolution qui va adopter ce qu'on appelle disaster preparedness. Comment un pays prépare pour faire face à un désastre. Et dans le même contexte, capable aussi souligner les débats qui pourraient leur préparation pour une pandémie. Nous avons aussi des choses qui sont arrivées dans le passé. Une des préoccupations aussi majeures pour nous en particulier et pour les autres îles, c'est ce qu'on appelle sea level rise. Donc, c'est l'effet du changement climatique, mais en particulier la montée du niveau de la mer qui menace en fait l'existence même de plusieurs îles. Et non aussi un sujet qui peut faire l'objet de beaucoup de débats, mais au Kababatan, c'est le AI governance, parce qu'il nous cause beaucoup de cadre réglementaire pour AI, mais en fait pour Bizin, et non aussi un framework international, parce que si un pays prend bonne mesure et qu'un autre pas prend bonne même mesure, risque de l'avantage que ça le pays a gagné. Donc, il est nécessaire qu'il puisse être en fait un accord international pour que tout un pays adopte les mêmes mesures par rapport à AI. Et non, un débat intéressant qui commençait un peu déjà dans la session précédente et qui peut certainement continuer dans cette session-là, c'est ce qu'ils appellent Beyond GDP. Parce que pendant de nombreuses années, en fait, GDP fut l'indicateur principal de beaucoup de questions liées au développement, au financement du développement. Et là, finalement, un début, on est encore tout au début, mais vous avez souligné, de débat sur comment nous visons, et non, les autres indicateurs, comment nous visons assessment de vulnérabilité de spécifique de certains États, et non un seul critère qui applique à tout le monde et qui est le critère traditionnel de GDP.
1: जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अब भी काफी अधिक है। एक महीने में आयात 9.4% घटकर करीब 30.4 बिलियन रह गया। इसकी एक बड़ी वजह ईंधन पर खर्च में आई कमी है। दूसरी ओर निर्यात 10.7% बढ़ा है, मगर ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन से हुई है। इसे अलग कर दें तो निर्यात में 7% की गिरावट दर्ज हुई है। जुलाई में व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्री एरिक निंग का कहना है कि केवल एक महीने के आंकड़ों से पूरी स्थिति का पता नहीं चलता है। उनके अनुसार मॉरिशस को अपना निर्यात बढ़ाने और नए सामान विदेशों में बेचने पर ध्यान देना होगा, साथ ही खाने पीने की चीजों और ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी। धूम्रपान केवल फेफड़ों और दिल को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे पुरुषों और महिलाओं को माता

0: ता बनने में भी परेशानी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 सितंबर को जारी अपनी नई रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में बताया है। वर्ष 2026 के बीच दिए किए गए अध्ययन के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं को गर्भधारण में परेशानी का खतरा 40% अधिक हो सकता है। मॉरिशस में धूम्रपान करने वाले पुरुषों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार 35.3% पुरुष और 3.7% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। हालांकि बच्चा होने में परेशानी का केवल एक ही कारण धूम्रपान नहीं, फिर भी इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर विदीश रामचरितर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उनसे बात की शबनीस उजिया वाहिद अली ने, विवरण गीता सुनाराम।
1: Définitivement, nous trouvons une hausse de fertilité qui a augmenté surtout dans les derniers 5 à 10 ans.
2: पिछले 5 से 10 वर्षों में इनफर्टिलिटी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर कारण दुनिया भर में पुरुषों को लेकर हैं। सिगरेट से कई समस्याएं पैदा होती हैं। हम सिगरेट न जलाने की सलाह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, शीशा या अन्य पदार्थों का भी सेवन न करने की सलाह देते हैं। सिगरेट पर खोज की गई है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। किसी व्यक्ति को सिगरेट न चलाने की बात कहने का भी एक तरीका है। सरकार द्वारा देश के अस्पतालों में स्मोक सिजेशन क्लिनिक कायम किए गए हैं।
0: चीनी वाहन कंपनी BYD ने सितंबर की शुरुआत में चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इन गाड़ियों के ब्रेक पैडल के एक हिस्से में खराबी पाई गई है। इनमें क्वीन और टैंग सीरीज की वे गाड़ियां शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2014 से 2022 के बीच बनाया गया था। मॉरिशस में BYD गाड़ियों के मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सीरीज देश में नहीं बेची जाती। हालांकि मॉरिशस के वाहन बाजार में BYD की बिक्री बढ़ रही है। नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के 9 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में मॉरिशस में BYD के 57 गाड़ियां बिकी हैं। इसके साथ BYD अगस्त में सबसे अधिक बिकने वाली वाहन कंपनियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। कॉल एलिजे और दाविद टोमास की बताई जा रही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रावातोमांगा मामले से जुड़े 350 मिलियन रुपए की कथित मांग की बात सामने आई है। हालांकि रिकॉर्डिंग असली है या नहीं और इसमें किन लोगों की आवाजें हैं ये अभी साबित नहीं हुआ है। जांच अब फ्रांस तक पहुंच गई है। FCC की एक टीम रविवार को वहां पहुंची है। सोमवार को फ्रांस में मॉरिशस के दूतावास में उस व्यक्ति का फोन जांचा गया जिसे कथित तौर पर अक्टूबर 2025 में ये ऑडियो मिली थी। जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइल कब और कैसे मिली और इसे किस तरह सुरक्षित रखा गया। अद्रियन वालिया, गीता सुनारान।
2: प्राप्त जानकारियों के अनुसार जिस फोन की जांच की जा रही है वो फ्रांस में रहने वाले नासिर बिकी के एक करीबी का है। बताया जा रहा है कि ये फाइल उसे 23 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्डिंग किए जाने वाले दिन ही भेजी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से ये फाइल उसके करीबी को भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि नासिर बिकी ने उससे इस फाइल को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भेजने को कहा था। इस तरह नासिर बिकी ने ये फाइल दोबारा हासिल की और बाद में FCC पहुंचे, जहां उन्होंने 11 सितंबर को एक अफिडेविट और एक USB की के साथ ये रिकॉर्डिंग सौंपी थी। अब जांचकर्ता इसी दावे की पुष्टि करने में जुटे हैं। जांच की ये प्रक्रिया फ्रांस में मॉरिशस के राजदूतावास में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। उनके वकील समाद गुलामली के अनुसार फ्रांस में की गई ये कार्रवाई तेजी और गंभीरता के साथ पूरी की गई है। उन्हें उम्मीद है कि अधिकारियों के मॉरिशस लौटने के बाद जांच में और तेजी आएगी। वहीं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मीडिया में जानकारी लीक होने पर चिंता जताई है। आयोग का कहना है कि इससे जारी जांच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान की पुष्टि होना अभी बाकी है।
0: यमन में लड़ाई तेज होने के बाद हजारों लोग जान बचाकर पड़ोसी देश जिबूती पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने वहां शरणार्थी शिविर में पना ली है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हाल की हिंसा के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लगातार हवाई हमलों, ड्रोन और मिसाइल हमलों से तटीय इलाकों में डर और तनाव बना हुआ है।

चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर बरसात होगी। शाम के मौसम की बात करें तो देश के पश्चिम में बरसात जारी रह सकती है, अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी और अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:59 पर और सूर्यास्त 5:06 पर होगा।

देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रीट में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के मनीचंद रामफल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मानिक के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के सवा दो बजे उनके बेटे प्रकाश रामफल के घर, लोग उन्हें दीप के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। रू जासमें मुसलमान आयन रोज हाईलैंड्स में 73 ईयर्स ओल्ड की जुनिया दियापाल सिंह की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामचरितु, लोग उन्हें गौमती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे राकेश दियापाल सिंह के मकान हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड बॉम्बू में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के भूमेश्वर उलकोरी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दया के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोन्टाइन सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। सीते गारीबो वाली दे प्रेत में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के राज उजागिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाली दे प्रेत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। Avenue Fleuris Plaisance Rosilmé 34 ईयर्स ओल्ड की ऋषि ओलकोरी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अर्जुन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण दत्त राम गुलाम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नारायण के नाम से अधिक जानते थे और वे प्राइमरी स्कूल फिजिकल एजुकेटर की हैसियत से काम करते थे। उनकी अर्थी आज दिन के सवा दस बजे मुगा फ्यूनरल पॉल पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:15 AM। मोरिस मोटे स्ट्रीट लेस्पेरेंस पितोमे 72 ईयर्स ओल्ड के आनंद चमन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीव चमन के मकान पितों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM।

0: un passa high Royal Road Goodlands me un passa high Royal Road Goodlands me ikyan besal ki 91 years old ki dunwanti sahai ki mrityu ho gayi hai log unhe pati ke naam se adhik jante the unki arthi aaj dopahar baad 2 baje unke bete goi damri ke makan goodlands se uthakar antim sanskar ke liye boagush goodlands ki shmshan bhumi le jaya jayegi cremation today at 2 p.m. Reservoir Road Goodlands में Reservoir Road Goodlands में 77 साल की मिसेज मारी क्लोडेट सीतामल की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हें के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोतोतो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 a.m. High Metal Road, Pointe-Pimome, 58 साल की 58 years old की धरी माउती गंगवा की मृत्यु हो गई है पैदाइश नमगीदोई लोग उन्हें इंदिरा के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थे आज दोपहर बाद 2 बजे उनके पति सुखदेव गंगवा के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोइंट-ओ-बीश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: NBC Play, Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti हम आपके
1: हैं। आज की प्यारी सी सुबह यहीं तक थी, मैं चलती हूँ आपके साथ। तो ये सफर बहुत प्यारा रहा, ढेर सारे गानों और मस्ती के साथ जुड़े रहिए। जो भी करें दिल से करिए, थोड़ा मुस्कुराइएगा, पूरे दिन गुनगुनाइएगा और अपने दिन को प्यारा बनाइएगा। मैं चलती हूँ पर मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है वेदिता का। एंजॉय कीजिए गानों को।

0: For submission is 24th September 2026 at 2 PM.
1: टाइम चेक सुबह के 7 बज रहे हैं.
2: वेलकम टू RM2
3: रेडियो मस्ती.
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4, सेंटर 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
4: Deezer Vidi.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 7:04 हुए हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं विदिता आ गई साथ देने के लिए आपके अपने मॉर्निंग बीच में, आपके अपने रेडियो मस्ती पर। तो आज हो गया ट्यूसडे 22nd of September। हाय, वक्त तो भाग रहा है जी, बिल्कुल वक्त भाग रहा है और वक्त के साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं भाग ही रहे हैं। तो भागना बंद करो, 2 मिनट बैठ जाओ, सांस ले लो

आराम से जिंदगी सिर्फ भागने के लिए नहीं होता है, जिंदगी जीने के लिए होता है। ऐसे भागते रहोगे फिर मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस जीवन भर भागते रहे। तो भागना बंद करो, सांस लेना शुरू करो और हर एक पल को एंजॉय करना शुरू करो। सो गाइज, आई जस्ट होप यू हैविंग अ ग्रेट टाइम हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती। और हम यहाँ पर जब आ ही गए हैं तो चलिए आपके लिए कुछ ऐसे खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। सो जहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 5499124। मैं उवेदिता साथ रहूँगी। अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एंड किसी को अगर हेलो हाई कहना है तो ज़रूर, किसी को गुड मॉर्निंग कहना है तो नंबर वही है 5499124।

Guys, welcome to Radio Masti. Welcome, और यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ विनीता. सुबह के 7:15 हो रहे हैं. तो बताइए कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और कुछ लोग तो अभी भी घर पर होंगे, काम पर जाने की तैयारी भी हो रही होगी. और सुबह का भागा दौड़ी, ये तो नॉर्मल सी बातें होती है. हर कोई भागता है, हर कोई ऐसा नहीं है जो आराम से बैठता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, hello, morning में ये step करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, पूरा time निकल जाएगा. बहुत difficult है ये step. हाँ, लेकिन हाँ, आप लोग बॉडी मूव कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं डेफिनेटली हमारे साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर. सो हाउ यू फीलिंग दिस मॉर्निंग? आई नो जब मंडे निकल जाता है तो मन में थोड़ा सा बोझ निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि और एक दिन, फिर और एक दिन, फिर वीकेंड आ जाएगा, और एक दिन ऐसा होता रहता है. अच्छा है ना, ऐसी वाली फीलिंग बड़ी अच्छी होती है. तो चलो आप लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी सोच के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करो. जब आप सुबह उठते हो, टेंशन मत लो, ये मत सोचो अरे यार कहीं देर ना हो जाए, अरे यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए. अगर जब आप लोग अपने दिमाग में इतना निगेटिविटी डाल देते हो ना, तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह जब आप उठो, ऊपर वाले का नाम दो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है. फिर उसके बाद थैंक यू बोलने के बाद स्माइल के साथ उठो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, एंड पहले अपने आप को आईने में देख के स्माइल कर दो. कोई नहीं तो कम से कम खुद से स्माइल तो कर ही सकते हो, है ना.
1: RM2 Radio Musti.

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो दोस्तों डोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर है जो हम देना चाहेंगे हमारे बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को, और ये वाउचर जो है आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे हमारा लकी ड्रॉ होगा और साथ में यहाँ पे हम कॉल करेंगे उनको और बात करेंगे उनसे जो थोड़ी देर में, यानी कि अगले गाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी इस लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है और कौन होगा वो जिनका आज हम रेडियो मस्ती पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बस थोड़ी देर में आपसे हम ये जो खुलासाएं करेंगे कि भाई कौन है वो जो आज हमारे बर्थडे अपने बर्थडे पे वो लकी हो रही हैं, तो थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए हम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी थोड़े बिजी हैं, तो एक बार फिर कॉल करते हैं और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक आप गाना सुनिए, नंबर आपको पता है ना, इट्स 5491294। अगर आप चाहें तो आप भी किसी को विश करना चाहते हैं या किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं, उनका नाम और फोन नंबर हम तक अभी पहुंचा सकते हैं। आपके पास 2 मिनट तो हैं ही।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, जिसका हम इंतजार था, चलिए उनसे मिलने का टाइम आ गया. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: हाय इशाली, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. इशाली, इशाली कैसी हैं आप?
3: I'm good.
2: Okay. आप रहते कहाँ पे हैं इशाली?
3: Mochida.
2: Mochida. It's very cold there, Mochida.
3: Yeah.
2: Are you still cuddling your kilt? अभी भी आप अपने कंबल के साथ प्यार में हो या तो फिर ब्रेकअप कर दिया उठ रहे हो?
3: No, I'm just having coffee right now.
2: Oh my God, गर्मा गर्म कॉफी और फिर उसके बाद यहाँ पर रेडियो मस्ती की पूरी टीम.

0: from Radio Musti.
1: So wishing you a very very happy birthday, Ishali. सबसे पहले तो आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, Ishali. मैंने Ishali सुना है, but it's Ishali. It's a beautiful name and आपकी आवाज भी बहुत cute है और लग भी रहा है कि जैसे आप बहुत बहुत बहुत ज़्यादा sweet हो. तो ऐसे ही आप अपनी life में मिठास रखिएगा. मैं आपको बता दूँ कि हम आपको यहाँ पर wish करते हैं a very happy birthday पूरी team की तरफ से and साथ में लोलो hypermarket की तरफ से you're getting one voucher जो आपको collect करना पड़ेगा at MBC.
2: Thank you so much.
1: Yeah. And she's so happy. Wow. चलो भाई, हमने किसी को खुश तो कर दिया मॉर्निंग मॉर्निंग में. तो यहाँ पर आपको वो वाउचर मिल रहा है, बट यू हैव टू कम टू MBC एंड कलेक्ट इट. ओके, आज नहीं तो कल. यू हैव टू डेज, बट इट्स बेटर यू कम टुडे इटसेल्फ एंड यू कलेक्ट योर वाउचर. एंड चलिए भाई, आपको बहुत सारा प्यार है एंड पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे. एंड मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको बर्थडे विश करने के लिए लक्ष्मण फैमिली, नायको फैमिली एंड ममा शालू और संजय शारव ने और आंटी शीतल ने आपको यहाँ पर सरप्राइज किया है. गुड, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लास्ट. बाय बाय.
3: मॉर्निंग बीट.
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
3: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
5: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: La Early Childhood Care and Education Authority informe les parents que les inscriptions dans les écoles préscolaires publiques pour l'année 2027 se tiendront du 7 au 30 septembre 2026. Tout enfant âgé de 3 ans au plus tard le 31 décembre 2026 est éligible à l'admission. Les inscriptions se feront dans l'école préscolaire publique la plus proche du domicile de 9h30 à 11h30 et de 13h à 14h30. Les parents devront se munir de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de l'enfant et d'une preuve d'adresse. Les places seront attribuées en priorité aux enfants résidant le plus près de l'école. Les demandes reçues après le 30 septembre 2026 ne garantissent pas l'admission dans l'école choisie. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Early Childhood Care and Education Authority, ECCEA, au 460 42 78.
3: Nous tenions à rappeler tout bonne compagnie et particulier qui apporte Frisidaire qui paye un moratoire pour nouveau règlement Energy Efficiency Management Office IEMO puis fini le 30 septembre 2026. À partir le 1er octobre 2026, tout bonne Frisidaire qui pour présenter à la douane pour dédouanement pour bizarre répondre à bonne norme performance énergétique. La douane pas pour autorise dédouanement aucune cargaison si de pena un certificat qui émet par IEMO pour sa modèle Frisidaire qui peut apporter là. Pour éviter tout désagrément, nous conseillons d'enregistrer ban modèle Frisidaire qui peut apporter avec IEMO au plus vite possible. Pour plus d'informations, contactez IEMO au 206 80 70.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musti. Your number one Balalut station.
5: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
6: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
7: अनिल सर चलिए अभी टाइम हो गया अरविंद से मिलने का जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है गुड मॉर्निंग अरविंद
8: गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड अगले तीन हफ्तों के लिए इंटरनेशनल ब्रेक छुट्टी केवल लीग के लिए पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका होगा इंग्लैंड की टीम में एक के बाद एक इंजुरी क्राइसिस चिनो लिवरामेंटो कोबी माइनू कोल पाल्मर मार्कस राशफोर्ड और डेक्लन राइस इंग्लैंड के लिए इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएंगे कोच टोमास टुखेल के लिए समस्या गंभीर मॉर्गन गिब्स व्हाइट और जेम्स गार्नर को इमरजेंसी बुलाया गया है इस शनिवार को इंग्लैंड का सामना वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से होगा वेम्बली में इसके बाद 28 सितंबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच 3 अक्टूबर को क्रोएशिया के खिलाफ और फिर 6 अक्टूबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच है ये सभी मैच नेशंस लीग के लिए हैं ग्रुप 3 में इंग्लैंड की टीम है टीम टॉक के अनुसार लिवरपूल फेयेनोर्ड के 20 साल के राइट बैक गिवारो रीड को मॉनिटर कर रहा है पर मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल भी उस पर रुचि दिखा रहे हैं गिवारो रीड नेदरलैंड्स का अंडर 21 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं इधर एशियन गेम्स में 13 साल की यू जीडी ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता इस बार 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में चैंपियन बनी फिर से चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ इससे पहले 200 मीटर बटरफ्लाई में भी यू जीडी गोल्ड मेडल जीत पाई थी आईची नागोया जापान में लग रहे इन खेलों में अभी तक चाइना 23 गोल्ड मेडल जीत पाया है टोटल 38 फिर जापान 8 गोल्ड मेडल रिपब्लिक ऑफ कोरिया 5 गोल्ड मेडल भारतीय डेलीगेशन के खाते में 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं एशियन गेम्स में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई बांग्लादेश को हराकर फाइनल में आज श्रीलंका के खिलाफ मैच है सुबह 8:30 ये फाइनल शुरू होगा मॉरिशस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम क्लब एम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी पहला मैच 2 अक्टूबर को और दूसरा 5 अक्टूबर को दोनों मैच 7:00

0: कोदो के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उधर कुसाफा कप अंडर 20 में सेशेल्स ने मॉरिशस को 4-3 से हराया। सरजू गौरीशंकर के जवानों के लिए आज आखिरी मैच, ये मेजबान टीम मोजाम्बिक के खिलाफ होगा। उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो अभी तक शायद नहीं खेल पाए हैं। उधर क्षेत्रीय स्तर पर सप्ताहांत के दौरान होशनुआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में बॉम्बू वेरिये की सबाकोस टीम ने ग्रांबे की ब्लैक कारोल एफसी को 4-0 से हराया था। प्लेन मायां वेटेरन फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन शेबेल की जीत 1-0 से साउथर्न नेशनल वेटेरन एफसी के खिलाफ, स्कोर 1-0, जबकि अरब सिटी ने ट्रॉ बुटिक को 5-2 से हराया। ये टूर्नामेंट जारी है। इधर इक्वायोर लेगेसी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल इस संडे को टेरूज रेंजर्स वर्सेस वेल एफसी। और साइकिलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज मिक्स रिले की बारी है और अंडर 19 यानी जूनियर कैटेगरी में भी हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे। उनको कहेंगे ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। कीप ऑन लिसनिंग रेडियो मस्ती। आई विल कैच यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविन।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Morning beat.
4: Oh God, one more remix.
3: A good beat for your morning show.
5: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show.
1: James.
2: RM2, Radio Musty in the mix.
3: एन अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। इस पार मिलते हैं, कुछ और धमाका करते हैं आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
4: Drop the bell.

नमस्ते प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बरहम के बीच कल दोपहर या फोन पर बातचीत भइल। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक सकारात्मक माहौल में भइल इस बातचीत में मॉरिशस ब्रिटेन के संबंध और शागो मुद्दा पर

0: खास चर्चा भइल एंडी बर्नहम फिर भरोसा दिलैलन कि 22 मई 2025 के भइल समझौता के मंजूरी दिलावे खातिर ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलके काम करी जेगोगोसिया सैनिक अड्डा के कामकाज सुरक्षित रखल ब्रिटेन के बड़ा प्राथमिकता बनल बा डॉक्टर नवीन राम गुलाम शागोसियन समुदाय के ई दर्द भरल अध्याय के हमेशा खातिर समाप्त करे में ब्रिटेन से मिल रहल सहयोग के स्वागत करलन दोनों प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलीबैंड के बीच होखे वाला बैठक के भी स्वागत करलन करीब 130 देशन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसर बड़ा नेता आज से न्यूयॉर्क में जुटत हवन जा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां अधिवेशन शुक्रवार ले चली मॉरिशस के ओर से विदेश मंत्री रितेश रामफल ई में हिस्सा ली वन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक में शामिल नहीं हो यंजा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के अमेरिका से वीजा नहीं मिलल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज महासभा के संबोधित करियन रितेश रामफल शुक्रवार के मॉरिशस के बात रखियन विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदोयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलन मितौबान भी न्यूयॉर्क में मौजूद हवन जा ये बार संयुक्त राष्ट्र के अगला महासचिव के चुनाव एगो बड़ा मुद्दा रही जलवायु बदलाव से पैदा हो रहल समस्या और दुनिया भर में AI के इस्तेमाल खातिर नियम बनावे पर भी चर्चा हो सकेला ये पर ही कुछ प्रस्ताव मंजूर होके के भी उम्मीद बा जुलाई में मॉरिशस के व्यापार घाटा कम भइल बा बकेर पिछल का बरिस के जुलाई के से तुलना करल जाए त ई अभियोग काफी जस्ती बा ई एक महीना में आयात 9.4% घट के 30.4 बिलियन रुपया रह गल एकर एगो बड़ा कारण ईंधन पर खर्च में कमी बा दूसर ओर निर्यात 10.7% बढ़ल बा बकेर ई बढ़त खास तौर पर जहाजन के दिहल जायला सामान और ईंधन से भइल बा धूम्रपान खाली फेफड़ा और दिल के नुकसान नहीं पहुंचावेला एकरा चलते पुरुष और महिला के माँ बाप बने में भी दिक्कत हो सकेला विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक धूम्रपान करेवला महिला के गर्भ ठहरे में परेशानी के खतरा 40% जस्ती हो सकेला मॉरिशस में 35.3% पुरुष और 3.7% महिला धूम्रपान करेला बच्चा होखे में परेशानी के कई गो कारण हो सकेला बकिर धूम्रपान से होला खतरा के नजरअंदाज नहीं करे की चाहेला कॉल एलिजे और दाविद टोमास के आवाज बतावल जा रहल एको ऑडियो रिकॉर्डिंग में गवातुमांगा मामला से जुड़ल 350 मिलियन रुपया के कथित मांग के बाद बा ये रिकॉर्डिंग के जांच अब फ्रांस ले पहुंच गल बा FCC के एको डेलीगेशन रविवार के फ्रांस पहुंचल सोमवार के मॉरिशस दूतावास में ऊ आदमी के फोन जांचल गल जेकरा अक्टूबर 2025 में ई वीडियो फाइल मिलल रहल जांच अधिकारी पता लगावत हवन जा की फाइल कब और कैसे मिलल और एकरा के कैसे सुरक्षित रखल गल रिकॉर्डिंग असली बा के नहीं और ई में किकर आवाज बा ई अभी साबित नहीं भल बा यमन में लड़ाई तेज होके के बाद हजारों जना जान बचा के पड़ोसी देश जिबूती पहुंच गल हवन जा पिछल का कुछ दिन में 3000 से जस्ती लोग एगो शरणार्थी शिविर में आसरा ले हवन जा तई रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार हमनी के सुन ला जा धन्यवाद
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2, Radio.

0: सुबह के 8:08 हुए, तालियों की गूंज तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है भाई। गुड मॉर्निंग,
1: a good beat for your morning show from RM2
2: radio musty।
0: चलो भाई, ताली वाली बजा ली, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो ना? मॉर्निंग में यही जरूरत होता है हमें, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो गानों से आती है। तो उम्मीद करती हूँ इस गाने ने अपना मैजिक कर दिया होगा। अभी मैजिक हम जारी रखेंगे आपके अपने इस मॉर्निंग बीट में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, मैं हूँ विदिता, आपका साथ दे रही हूँ। आप बताओ कैसे फील कर रहे हो, अगर कुछ बताना ही है तो नंबर आपको मैं दे ही देती हूँ, नंबर है 5491294। अब दिन भर मौसम कैसा रहेगा चलो जानने हैं, और ये जानने के लिए हम मिलते हैं आस्था के साथ।
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मौसम की जानकारी। पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारी स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह के दौरान रह रहकर बरसात होगी। शाम को देश के पश्चिम में बरसात जारी रहेगी, अन्य जगहों में बादल घिर रहेंगे। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम खराब ही रहेगा और बादल घिर रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 6:05 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
5: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Les 5 kg de croquettes Bois Gokibble 10% gratuit à 572,95 € et le bol antidérapant de 14 cm à 119,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une

ब्यूटीफुल सॉन्ग द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. यस, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग वीट वेदिता के साथ. सुबह के 8:15 हुए हैं. आई नो यू आर लविंग द सॉन्ग. और भाई, बीइंग इन योर 40s इज सो कंफ्यूजिंग. पेपर पे तो होता है 40, लेकिन कॉन्सर्ट में आप 25 की फील करते हो, 9 बजे के बाद 87 का फील करते हो, सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं तो 100 साल की फील करते हो.

0: लेकिन जब 90s का म्यूजिक आता है देन यू फील 17 अगेन. एम आई राइट?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो अभी हम चाहते हैं कि आप 17, 18, 20 की फिर से फील करें. वैसे 50s में आते हैं तो हमें लगता है कि तुम तो पैदा ही नहीं हुए. चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गेम और

Sakira, the first Bhojpuri live concert at Bliss Banquet Hall, Arsenal. और यहाँ पर MBC की तरफ से आपको दो tickets मिल रहे हैं to be part of this fantastic evening. ये आपको बता दूँ कि वहाँ पे live performance होंगे रंभा राम तोहल, नीरज गुप्त मधु, किशोर खीमिया, कुणाल हीरीलाल, रोशन सदा सिंह और कृषि मणि के साथ. और साथ में वहाँ पे DJs भी होंगे जैसे नील के, स्पाइकी वी, DJ वकील, DJ अभी एंड DJ अनी. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 5792626 पर. जलसा की रात. अब चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी. वैसे हमारे इस लिस्ट में जो भी लाइव परफॉर्मेंस होने वाले इतने सारे सिंगर्स के साथ, उसमें से एक सिंगर है जिसके गाने का जो शीर्षक है जलसा की रात, आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सा सिंगर है जिन्होंने जलसा की रात टाइटल वाला गाना गाया है. तो ये गाना आप सुन भी चुके हैं, हमने आपके लिए चलाया भी था मॉर्निंग में समाचारों के बाद. तो जल्दी बताइए कि जलसा की रात जो है, इन सभी जो सिंगर्स हैं इनमें से वो कौन सिंगर है जिनका ये टाइटल सॉन्ग है. और आपको मुझे जवाब देना है ऑन 549 और 1294 पर.

0: अजी आपको टिकट्स मिल रहे हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा सवाल तो एकदम सिंपल सा था। आपने हमारा गाना सुना भी और आपको बस ये बताना है कि हमारे जो ये सिंगर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, जिनका लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है जलसा के रात प्रोग्राम में जो ब्लिस बैंक्वेट हॉल अर्सेनल में होने वाला है ऑन 26 ऑफ सितंबर, आपको बताना था मुझको कि जो गाना है जलसा की रात वो किसने गाया है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए, लकी ड्रॉ हो चुका है, हमारा विनर कौन है ये जानने से पहले मैं आपको एक बार फिर सुनाना चाहूंगी वो गाना।

तो ये वो गाना है और गाना जो है गाया है कुणाल हीरीलाल ने, हमें बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। अब विनर कौन है ये जान लेते हैं। तो विनर है अरुण वर्मा राम भरत जो रहते हैं रिविया जगहों पर। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं आपको बताऊं कि कुणाल हीरीलाल के साथ यहां पर रामबा राम तोहर, नीरज गुप्त, मधु, किशोर कीमिया, रोशन सदासी एंड कृषि मोनिक परफॉर्म करने वाले, इनका लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है 26 सितंबर जलसा की रात अदलिस बैंक्वेट हॉल ऑसिनाल, और यहां एमबीसी की तरफ से आपको 2 टिकट्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पे डीजेस भी परफॉर्म करने वाले हैं, नेल के, स्पाई की वी, डीजे वकील, डीजे अभी एंड डीजे आनी। ज्यादा जानकारी के लिए 5792626 पे कॉल करें। कांग्रेचुलेशंस टू अरुण वर्मा राम भरत, आपको आकर एमबीसी अपना टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा 9 से सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच आपको आना है अपने आईडी कार्ड के साथ और अपना टिकट ले जाना है। थैंक यू। एंड चलिए इसी के साथ बाकी जो हमारे दोस्त हैं, आप निराश मत होइए, आज नहीं तो कल आपको मौका मिल ही जाएगा।

0: वेरी गुड मॉर्निंग, घड़ी मिलाते चलिए जी, सुबह के 8:33 हुए हैं। यू आर लिस्टिंग टू मॉर्निंग बीट,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: वैसे गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है ना कि सांस में सांस आ गई, जान में जान आ गई, है ना। ये मौका होता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, आपका तो ब्रीद इन ब्रीद आउट का एक्सरसाइज भी हो गया होगा, राइट। अच्छे से सांस लिया होगा, क्या गाना है, वाह, स्पेशली लता जी की आवाज़ में कमाल है। चलो तो यहाँ पर हम कुछ लोगों को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। यहाँ पर बहू शानी का बर्थडे है तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपके साथ सुमा की तरफ से। राहुल चुड़ामन को हैप्पी बर्थडे, पापा सूरज साथ में है, रेशमा एंड ऑफकोर्स सिंजा की तरफ से, और कौचिम नित्या सिंहा आप तो आपको हैप्पी बर्थडे, एंड बेटी अनवी के लिए हैप्पी बर्थडे। ये है प्रकाश एंड पूजा ऑफ काथाकुको, दीपक को गुड मॉर्निंग, दीक्षा महेम जो है हमें सुन रहे हैं क्यूपिप से, हैप्पी बर्थडे टू यू आपकी सिस्टर विधि की तरफ से। पिया भिकारी है मौसल मौसल तौंद्रे से, एंड गाना होगा फॉर बॉबी, अनीश, अनीशा, माँ बसंती, रवि, उषा, सनी, मीनाक्षी, जूतन बिहारी फैमिली की तरफ से, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ आशा जानू जी हैं कॉटेज से। सबको उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है, हैव अ ग्रेट डे। ये गाना मामा कुमारी और सभी जानू फैमिली के लिए जो हमारे शो को इन्जॉय करें, थैंक यू सो मच। चलो अभी सांस में सांस आ गई, तो जितने भी लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकले हैं, जो लोग वॉक पे निकले हैं, या घर पे जो गाने पे डांस कर लेते हैं, गेट रेडी।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, जिंदगी में तीन तरह के लोगों को कभी मत भूलना। पहले वो जो तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, उन्हें तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। दूसरे वो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ गए ताकि तुम्हें याद रहे कि हर अपना अपना नहीं होता। और तीसरे वो जो तुम्हारे लिए बुरे वक्त की दुआ करते हैं, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना वक्त बदलने दो। क्योंकि वक्त का सबसे खूबसूरत इंसाफ ये है, जो कल तुम्हारी गिरावट देखना चाहते थे, कल वही तुम्हारी उड़ान देखने के लिए मजबूर होंगे। ना बदला लेना, ना सफाई देनी है, बस इतना याद रखना कि किसने मुश्किल में साथ दिया, किसने साथ छोड़ा और किसने तुम्हें गिरते हुए देखना चाहे। वक्त सबका आता है, आपका भी आएगा, बस इंतज़ार करें। जो लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो लोग दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
5: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.

सुबह 8:50 हुए हैं एंड आप इस समय सुन रहे हैं विजिता के साथ मॉर्निंग बीट. गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है. कैसे हैं, कहां तक पहुंचे, काम कर रहे हैं? ऑलराइट. तो चलिए यहां पर एक मैसेज और आया है, इनको भी पढ़ लेते हैं. ये मैसेज कहता है कि आज मेरी एल्डर सिस्टर का बर्थडे है, इनका नाम है अनीता बर्टन और वो रहते हैं लालमाची. तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड आज वो 70 ईयर्स की हो गई हैं, क्या बात है. तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल द जूसरी फैमिली, विदेशी फैमिली, अंजुबुद फैमिली की तरफ से. एंड कहते हैं सिस्टर तो मॉरिशस में सुन रही हैं. ओके जी, तो ठीक है, उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. और साथ में यहाँ पर ज्योति हैं, उनको भी हम कहेंगे गुड मॉर्निंग. और उन्होंने भी गाना डेडिकेट करना चाहा है टू सुरेखा, रेखा, आशनी, बदब फैमिली के नाम. डेडिकेटिंग दिस वन टू यू. यहाँ पर नमस्कार जो सीनियर सिटीजन है मेबर्ग में, लिस्कालिए, पिच विलियम में, विल्नो में, उनको हम गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं और नेक्स्ट गाना उनको डेडिकेट करना चाहते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. बड़ों को याद करना बहुत अच्छा है. एंड साथ ही साथ अगर बड़े हमारे साथ झूमने को तैयार हैं तो क्यों नहीं.

चलो जी, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। नीलमणि आ रही हैं आपके लिए लेकर मॉर्निंग मस्ती, और मस्ती करेगी वो खूबसूरत गानों के साथ। तो अब आपसे मुलाकात कल सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।

0: मंगलवार 22 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं और समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शागोसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा

0: ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। नए महासचिव का चुनाव जलवायु परिवर्तन और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा है। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। ब्रेक पैडल में खराबी मिलने के बाद BYD ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इसमें किन और टंग सीरीज शामिल हैं। ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती, इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे। गावाटोमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच फ्रांस तक पहुँच गई है। FCC ने कहा है कि एक व्यक्ति का फोन जांचा गया है। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और में सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में है, उनमें यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 120,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पना ली है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग एंड वेल यस आप कनेक्टेड हो गए हो मस्ती मॉर्निंग में एंड गाने में उन्होंने पूछा हु इज दैट गर्ल वेल इट्स नमनी एंड आपका स्वागत है मस्ती मॉर्निंग में. आशा करते हैं कि आप ठीक हैं. ट्यूजडे मॉर्निंग का मूड कैसा है आपका? आई एम श्योर अभी हमारे कुछ दोस्त अभी तक ऑफिस पहुँच भी गए होंगे और कुछ अभी ट्रैफिक में बस थोड़ा और करते हुए फंसे होंगे. और आज एक इंटरेस्टिंग डे भी है. आपको बता देते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कार फ्री डे. तो अगर पॉसिबल हो आज गद्दी को थोड़ा रेस्ट दीजिए, वॉक कीजिए, साइकिल निकालिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई कीजिए. थोड़ा सा चेंज लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप्स है. तो चलिए ट्यूसडे को थोड़ी मस्ती, थोड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सारे गुड वाइब्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट गाना आपके नाम करते हैं आदित्य नारायण की आवाज़ में आपके मॉर्निंग को मस्ती मॉर्निंग बनाने के लिए. एंड बाय द वे इट्स 99 मेक अ विश.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings.
3: I'm a Karina, kise de naal pyaar mundiya.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio. Musty.
2: मधम मधम हंसदे फिर से, क्योंकि आज का मस्ती मॉर्निंग चैलेंज है किसी एक इंसान को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देना। सिंपल चीजें जैसे कि यू लुक नाइस टुडे, मदद करने के लिए शुक्रिया और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बस ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं पॉजिटिवली। और बोनस पॉइंट बताओ, गुड वाइब्स देने से गुड वाइब्स वापस आती है, तो चलिए उसी को फील करते हैं साथ में आपके आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope.
1: RM2 Radio Musti.
2: सभी के लिए टाइम हो चला है होरोस्कोप टाइम का, तो चलिए जानते हैं क्या आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं और कौन सा लकी नंबर एंड कलर होगा आपके लिए यूजफुल, तो चलिए जानते हैं।
3: एरीज मेष राशि।
2: वेल आज आपका मूड फुल मैं खिलाड़ी तो नारी वाला होने वाला है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, बस जल्दबाजी में कोई डायलॉग बोलने से पहले सोच लेना। लव में थोड़ा फिल्मी ट्विस्ट पॉसिबल है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज आपका वाइब है कुछ कुछ होता है, स्पेशली जब फेवरेट पर्सन सामने आए। वर्क में पेशेंस रखिए, रिजल्ट्स धीरे धीरे आए तो टेंशन नहीं होगा। लकी कलर आज आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज माइंड में आइडियाज की बारिश होने वाली है, एक मिनट सीरियस दूसरे मिनट में फुल कॉमेडी, बिल्कुल बॉलीवुड एंटरटेनर की तरह। बस एक काम चूज करके कंप्लीट भी कर लेना। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: दिल बोलेगा तुम पास आए, इमोशनल वाइब्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर बात को ओवरथिंक मत कीजिए। आज अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालना जरूर। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि।
2: आज आपकी एंट्री जब होगी ना तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलना लगेगा। कॉन्फिडेंस आपकी सुपर पावर है, बस एटीट्यूड को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। आज कोई आपके एफर्ट्स को नोटिस कर पाएगा। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि।
2: आपका परफेक्शन मूड ऑन है, लेकिन याद रखिए पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। हर चीज परफेक्ट करने के चक्कर में खुद को स्ट्रेस मत दीजिए। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 4।
3: लिब्रा तुला राशि।
2: आज रोमांस और चार्म दोनों फुल HD हाई डेफिनेशन मोड में होगा। किसी से स्वीट कॉन्वर्सेशन हो सकती है। फैशन चॉइस भी आपका ऑन पॉइंट रहेगा, बस डिसाइड करने में पूरा दिन मत लगा देना। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
2: आज आपके थोड़े मिस्टीरियस मूड में रहेंगे, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, इमीडिएटली रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है। लकी कलर आपके है मरून और नंबर है 8।
3: सजिटेरियस धनुराशि।
2: आज आपका दिल बोल रहा है इलाही मेरा जी आए, एडवेंचर आउटिंग या कुछ डिफरेंट करने का मन करेगा। रूटीन से एक छोटा सा ब्रेक लेकर आप का माइंड फ्रेश हो सकता है। लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 3।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
2: आज आपका बॉलीवुड डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, लेकिन आपके केस में टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं। फोकस रखिए, पेंडिंग काम निपटाने का दिन है। लकी कलर आपका है ग्रे और नंबर है 8।
3: एक्वेरियस कुंभ राशि।
2: आज कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और हो सकता है कि वो गुड वाला अनएक्सपेक्टेड हो। नए आइडियाज, नए कन्वर्सेशंस या नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं आपको, सो अपना माइंड ओपन रखिए। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 11।
3: पाइसेस मीन राशि।
2: आज आपका इमेजिनेशन फुल बॉलीवुड डायरेक्टर मोड में है, सपने भरे देखिए, लेकिन एक छोटा प्रैक्टिकल स्टेप भी लीजिए। और हाँ, किसी स्पेशल पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, फोन को 24/7 मत घूरिए यार। लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 7।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सुबह सुबह अच्छे मूड में होना बेहद इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी होता है। कभी भी दिन की शुरुआत कंपेयरिंग से नहीं करना है। एंड यस, मस्टी मॉर्निंग रिमाइंडर आपके लिए है कि सुबह सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी और की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर मत कीजिए। आप उनकी हाइलाइटेड रील देख रहे हो और उससे अपने बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर कर रहे हो। अरे नो, अपने लिटिल विंस पर फोकस करें। शायद आपका अचीवमेंट आज सिर्फ इतना है कि आप टाइम पे उठ गए, एंड ट्रस्ट मी दैट काउंट्स टू। वो भी होता है एफर्ट से, तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं विद निलमणि आपके ही आरएम2 वीडियो मस्ती पर, क्योंकि आपके लिए

0: इन 2 घंटों में लॉट्स ऑफ टिप्स लाने वाले हैं और इस आवर तो खत्म होने वाला है, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट आवर में और भी टिप्स लाते रहेंगे, इंक्लूडिंग फैशन टिप्स। तो यही पर आप रहना कनेक्टेड एंड एंजॉय करते हैं म्यूजिक को साथ में मस्ती मॉर्निंग में।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती,

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे आस्था नमस्कार.
6: नमस्कार. 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. शगुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई. एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शगुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफर और एड मिलिबान के बीच होने वाली बैठक का स्वागत किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है. करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं. मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफर कर रहे हैं. नए महासचिव का चुनाव जलवायु बदलाव और AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं. जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है. आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा है. हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है. ब्रेक पेडल में खराबी मिलने के बाद BYD ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं. इनमें क्वीन और टैंग सीरीज शामिल हैं. ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे. गवातोमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच फ्रांस तक पहुँच गई है. FCC ने वहाँ एक व्यक्ति का फोन जांचा है. रिकॉर्डिंग की सच्चाई और उसमें

0: सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर पर यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 120,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पनाह ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
2: You're listening to Musty Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, Musty Morning के second hour में हमने ले लिया है entry और आपके लिए अभी है the 2 minute rule. आप बोलोगे वो क्या है नलमनी? बताती हूँ. ये ना एक छोटा सा daily hack है. हाँ, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे बाद के लिए छोड़ना ही क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, कप सिंक में है, वॉश कर लीजिए उसे. एक जरूरी मैसेज का रिप्लाई करना है, अभी कर दीजिए. बेड पे कपड़े हैं, फोल्ड कर दीजिए. छोटी छोटी चीजें पाइल अप होती है और फिर हम बोलते हैं इतना काम कब आ गया. सो दैट्स व्हाई होता है ये 2 मिनट का रूल. ट्राई करके देखिए और हमारे साथ शेयर करना ना भूलें. आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. फॉर नाउ म्यूजिक के साथ वाइब करते हैं आपके ही RM2 वीडियो मस्ती पर.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Musti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे गाना बहारा से याद आया कि कभी कभी माइंड को डिक्लटर करना ना बेहद जरूरी होता है।

कभी-कभी घर मैसी नहीं होता है, माइंड होता है मैसी। आज एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, पेपर पर आपको तीन चीजें लिखना है। एक जो आपको करना है, सेकेंडली वो है उस चीज को जो वेट कर सकता है, तीसरी चीज वो है जो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। हर चीज को अपने कंधों पर कार्य करना जरूरी नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स को सिंपली बोलिए, आप अपना देखो मैं अपना देखती हूँ, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो कुछ ही देर में आपके मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं। सो 5499124 पर अगर आपके पास है कोई मैसेज या डेडिकेट

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:28 हुए हैं और हमारे कुछ दोस्त जो 11 के

0: शिफ्ट में हैं, वो निकल चुके हैं फॉर वर्क. बो कुराज टू यू, स्टे सेफ. एंड यस, घर से निकलने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट, फोन, वॉलेट, चाबी और स्माइल को साथ लेकर ही निकलना. फोन भूल गए तो वापस आ सकते हैं, वॉलेट भूल गए तो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में ही सब कुछ होता है, लेकिन स्माइल को आपने अगर घर पर ही छोड़ दिया तो पूरा दिन कैसे चलेगा. सो जगे विद यू नमन यही पर है आपका साथ निभाने के लिए. चिल्नू आरंजू वीडियो मस्ती पर ही लेट्स गो वाइब करते हैं अन्नदर गाने के साथ आपकी ही मस्ती मॉर्निंग में.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Yes, it's time for fashion. Fashion rule ना हमेशा simple होनी चाहिए. अगर outfit पहन कर आपको बार बार कपड़े adjust करने पड़ रहे हैं तो वो outfit कितना भी stylish हो ना, at some point वो आपका mood खराब कर ही देगा. तो आज choose कीजिए ऐसे clothing को जो करेगा आपकी life को आसान, ताकि आप move कर सको, breathe कर सको and also let you be yourself. क्योंकि असली style वो है जिसमें आप outfit को carry करें, outfit आपको नहीं.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यस टाइम टू रीड योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. एंड वैसे हमारे कुछ दोस्त जो अब्रॉड है वो साथ दे रहे हैं मस्ती मॉर्निंग में. वी हैव शिमला जी जो साथ दे रही है यूके से, वो सेंड कर रहे हैं लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स. एंड वो अभी ऑन द वे है, काम पर जा रहे हैं. तो आपको बुन कुराज. मलेशिया से वी हैव यश जो कनेक्टेड है, वो कह रहे हैं कि वो लव कर रहे हैं, लविंग द वाइब्स, एनर्जी मिल रही है मोटिवेटेड रहने के लिए. क्या बात, कोशिश तो जारी है, आप बस जुड़े रहिए. रोज़ो वी हैव ललिता जी जो साथ दे रही है और विश कर रहे हैं मिस शैनी को. हो गया है आज है उनका स्पेशल डे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड सभी कलीग्स की तरफ से भूमि, टीना, केशनी, शिवानी, शनिका, आश्ले, रवि, शैवी, रूमी, ललिता और कुमार जी की तरफ से लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज. तो आप यहीं पर रहना कनेक्टेड. एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल जिनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू. ये प्यारा सा गाना आपके नाम करते हैं.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे है। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार।
4: नमस्कार 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। शकुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शगुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफर और एड मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें भाग ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। नए महासचिव का जलवायु चुनाव, जलवायु परिवर्तन और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात दर 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। ब्रेक पैडल में खराबी मिलने के बाद BYD ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इनमें क्वीन और टंग सीरीज शामिल है। ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती, इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे। कवातुमांगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच फ्रांस तक पहुंच गई है। FCC ने वहां एक व्यक्ति का फोन जांचा। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर की खबरों में यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पनाह ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। बारान लेन बिलिया रिवियर सेश में 62 साल के 62 years old के धनमाराज ओजायब की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए लालू

0: इसी बिल्डिंग पे लेयर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: मैं और आप यहीं पर कनेक्टेड हैं आर एम टू वीडियो मस्ती पर तीसरे और आखिरी आओ में ही वी आर और भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए. बातें तो होती रहेगी वैसे, लेकिन अभी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं. इस बार आपके लिए शिल्पा राव की आवाज़ में गाने का नाम वाला सुन लेते हैं.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Musty Mornings Radio Musty.
1: एंड यस, आप कनेक्टेड हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ. एंड अभी के लिए हमारे लेडीज के लिए एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है. आपके हैंडबैग में हाँ जो आप पकड़ रहे हैं इस वक्त, उनमें कितनी चीज़ें हैं जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए. ही आई एम टॉकिंग अबाउट 3 महीने के रिसीप्स, पुराने लिपस्टिक, रैंडम कॉइन्स, चार्जर, हेयर टाइज और पता नहीं क्या क्या. आज ना बस 5 मिनट के लिए बैग को रिवर्स करके क्लीन करते हैं. क्लीनिंग के बाद ना आई एम श्योर कि आप सरप्राइज होंगे कि कितना हल्का फील होता है, लिटरली और मेंटली भी. तो आपका मेंटल हेल्थ सब मायने रखता है हमारे लिए. एंड हमारी तरफ से छोटी छोटी एफर्ट्स लाते रहेंगे आपकी लाइफ को बेहतर कराने के लिए. तो साथ देते रहिए आरएम टू वीडियो मस्ती पर. नमनी यही पर है फॉर सम मोर टिप्स.
0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड यस 11:37 हुए हैं और टाइम अभी यही इशारा दे रही है कि हमारे कुछ लिसनर्स अभी किचन में हैं, तो अभी के लिए एक किचन हैक ही शेयर कर देते हैं और वो है लेमन के बारे में। लेमन यानी कि नींबू को हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता था कि फ्रिज में रखने से पहले उसे एक एयर टाइट कंटेनर या जिप बैग में रखने से वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रह सकता है। एंड यस, अगर आपके पास अभी एक हाफ कट लेमन है तो उस कट साइड को कवर करके रखिए। सिंपल सा काम है, लेकिन आपकी लेमन को लंबी टाइम तक फ्रेश रख पाएगा, क्योंकि घर में लेमन ख़त्म होना मतलब अभी तो था वाला इमरजेंसी हो जाता है। तो और भी ज़्यादा टिप्स के लिए आप यही पर रहना हमारे साथ कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती पर। एंड अभी के लिए एक नया वाला गाना, इस बार आदित्य जैन की आवाज में रफ्ता रफ्ता। आशा करते हैं कि आप एंजॉय करें आपके ही मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे आजकल कितने सारे रूल से देखने को मिल रहे हैं कि घर को या फिर क्लीनिंग को किस तरीके से करें। पहले आओ में हमने बात किया 2 मिनट रूल के बारे में, अभी 10 मिनट रीसेट का रूल भी है और वो होता है कि आज घर में सिर्फ 10 मिनट रीसेट ट्राई कीजिए। टाइम लगाइए और जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं है ना उन्हें प्लेस रखिए और बस 10 मिनट के लिए पूरा घर क्लीन नहीं करना है और इंस्टाग्राम रील बनाने जैसा परफेक्ट भी नहीं बनाना है, जस्ट मेक योर स्पेस अ लिटिल बेटर दैन इट वाज। बस यही होता है ये 10 मिनट रीसेट का रूल। वैसे ये वाला टेम्प्टिंग है, वैसे घर जाकर ट्राई करूँगी ज़रूर। अगर आपने कभी ट्राई किया है शेयर करना और बताना कि कुछ असर हुआ कि नहीं। तो अभी के लिए म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, जारी रखते हैं गुड वाइब्स को, क्योंकि आरएम2 रेडियो मस्ती पर द म्यूजिक कीप्स ऑन गोइंग।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
3: Jab tak

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: It's 11:55 and अगर सुबह से काम का प्रेशर ऑलरेडी उफ करवा रहा है तो पोज लेना मत भूलिएगा. शोल्डर्स रिलैक्स, डीप ब्रेथ, थोड़ा पानी और फिर से रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का इमीडिएट सोल्यूशन ज़रूरी नहीं होता है. कभी कभी पॉज भी होता है प्रोग्रेस. एंड वैसे भी लंच टाइम जल्दी आने वाला है, तो आप बस थोड़ा और पेशेंस रखें. एंड इन एडवांस आपको विश करते हैं बन अपेची, टेक केयर, हैव अ गुड डे व्हाइल लिसनिंग टू योर RM2 रेडियो मस्ती.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: गाड़ी मिलाते चलिए, दिन के ठीक 12 बजे है. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था, नमस्कार.
5: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. शगुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई. एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शगुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और एड मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है. करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं. मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं. नए महासचिव का चुनाव जलवायु परिवर्तन और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल है. जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ. यातायात बल्कि आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा. हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है. गवातोमांगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच फ्रांस तक पहुंच गई है. फिसी ने वहां एक व्यक्ति का फोन जांचा. रिकॉर्डिंग की सच्चाई और इसमें सुनाई देने वाली आवाजों को पहचानने की पहचान अभी साबित नहीं हुई है. जापान में तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लापता बताई जा रही हैं. कई इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ आई. करीब 45,000 घरों की बिजली गुल है और कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं. तूफान अब जापान के पूर्वी तट से दूर जा रहा है लेकिन भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. क्लेफोन नंबर वन फिनिक्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद रफीक लुटन इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज दोपहर बाद दो बजे उनके बेटे मोहम्मद सलमान लुटन के मकान फिनिक्स से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की रजाक मोहम्मद मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
6: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musti.

0: जाम।
1: बस दिन के 12:08 हुए हैं, गीतों के जाम में जो नशा होता है, ओ माय गॉड, किसी और चीज में मन नहीं मिलता है। सो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स। नीतू का प्यार भरा नमस्कार।

प्रणाम स्वीकार करें। कैसे हैं आप ट्यूसडे आफ्टरनून? तो चलिए दो घंटों का सुरीला सफर रेट्रो रिदम माने कि आपको ले चले हैं प्यार की उन हसीन वादियों में, द 50s, 60s, 70s, 80s एंड कुछ 90s। व्हाट से 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार एज ऑलवेज। कोई गाना सुनना चाहते हैं, कई रिक्वेस्ट भी आते हैं, बस याद रखें कि रोज रोज सेम गाना। आई नो आपके दिलो दिमाग में इतने सारे गाने भरे हुए हैं, तो चुन चुन कर जो आपको बेस्ट लगे वो ही आप भेज दो। ऑफ कोर्स इट्स लंच टाइम, शुभ आहार, बोना पे जी।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: कैसे हैं अब्दुल अंसारा बानू 5499294 पर थैंक यू सो मच. चलिए आपको बना दिया है अपना साथी अपना हम सफ़र, तो बस इस खूबसूरत सफ़र में आप ही हमारे संग जुड़ जाइए. एंड 4285 डू नॉट फॉरगेट दिस मैजिकल नंबर अगर फ़ोन करना चाहे तो. अभी के लिए कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ें डाउन मेमोरी लेन टू द 90s, आँखों से दिल में उतर कर आ हा हा क्या मज़ा आता है.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: देखा जाए, अगर सोचा जाए तो आंखों आंखों से ही शुरुआत सब कुछ होता है। आंखें मिलती हैं, फिर दिल मिलते हैं, फिर दिल से जोड़ी एक बन जाती है। क्या बात है। 12:20 549-9294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू, काफी रिक्वेस्ट है। हाँ, और गाने तो बड़ी प्यारी प्यारी। अवधु फैमिली, खुशनुमा से साथ देने के लिए थैंक यू। वंडरफुल वेदर, वंडरफुल सिलेक्शन आप एंजॉय कर रही हैं। यह है और कौन, फिल्म का नाम, किशोर कुमार की आवाज में। एक प्यार है जो बार बार होता है प्यार, तो बस इस प्यार को बरकरार रखते हुए आपका स्वागत करते हैं ऑन रेडियो मस्ती।

1966 की क्लासिक मूवी तीसरी मंजिल नाजिर हुसैन की बनाए हुए, जिसमें शम्मी कपूर और आशा पारेख नजर आए थे। ओल्ड इज गोल्ड है ना। और इस मूवी में यानी कि शम्मी कपूर से पहले देवानंद साहब नजर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने एग्जिट कर दी। और फिर जब पता चला कि वो नहीं है, तब लेट शम्मी कपूर साहब ने कहा ठीक है मैं ये मूवी करूँगा।

वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आवाज ऑफ यानी कि बॉलीवुड महेंद्र कपूर. ये रात फिर ना आएगी, हम तो कहते हैं भाई ये घड़ी बार बार आती है हर रोज 12 से 2 के बीच आपके नाम रेट्रो रिदम के जरिए 12:33 पे नाच. नेक्स्ट गाना आपके नाम शमशाद बेगम त्रियोले से है एंड होल बंधु परिवार. आकाश पे बैठे हुए रफी साहब भी अपने इस गीत को सुनकर क्या मजे ले रहे होंगे.

हम तो कहते हैं जितने भी गाने हैं सब आपके नाम करते हैं। 12:41, थैंक यू सो मच। ऐसे गाने सुनकर बस मन को सुकून मिलता है ना। सो 5499-1294 आप इस नंबर पर भेजते रहे अपना मैसेज। प्रकाशवती कैसी है माय डियर? बेल्जियम से साथ निभा रही है। साथ में है चंद्रानी जी, प्रीति चुलन, हरक परिवार और सुजोंजी से। यहाँ पर रोशनी फ्रॉम सैपिया कहती है, मेरे पति जो थे वो इस गीत को गाते थे। कौन सा गाना? चलिए जहाँ भी हैं आज भी शायद इस गीत को गुनगुना रहे हैं, आप गुनगुनाते चले, उनको भी अच्छा लगेगा।

Definitely, तुम हो, तुम हो, तुम तो नहीं कह सकते, आप ही हो रंजीता कौर. Remember this actress? उनको देखा था हमने अखियों के झरोकों से, लैला मजनू, पति पत्नी और वो, या फिर सत्य पे सत्ता अलोंगसाइड बिग बी. यस, इसी एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रही हैं. आज इनका बर्थडे है. ऑलरेडी 70 years, बापरी बाप. और ज़्यादा फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन जितने भी मूवीज़ में उनको देखा हमने, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. एंड बहुत ही स्वीट एक्ट्रेस है, और उनकी एक्टिंग, उनका काम भी. ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा 5499-1294. आपके मैसेजेस का इंतजार.

0: बीत जाएंगे, रातें भी बीत जाएंगे, दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन हमारा और आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। दास वो शुभ 12:55
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती।
0: बस रवि साहब और लता जी का गाया हुआ इस गीत की फरमाइश आपकी तरफ से है कविता फ्रॉम मोचिदा पूरे परिवार के नाम राजा साहब। तो चलिए इस गीत को आप एंजॉय करते रहे। 1 बजे के समाचारों के बाद वापस मिलते हैं 2:00 PM। आपके मैसेजेस भर भर के आ रहे हैं। थैंक यू ऑन 5499-1294।

0: एक बज चुका है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे। आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसे सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बातचीत बताया है। कल दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नम ने फोन पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बातचीत के केंद्र में जाहिर तौर पर शागुस का मुद्दा भी रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। बयान के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वे अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए समझौते को आखिरकार मंजूरी दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिटेन के लिए प्राथमिकता रणनीतिक जेगोगोशिया सैन्य अड्डे पर सैन्य गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बनी हुई है। वहीं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने लंदन के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने शागुस समुदाय के लिए जिस मुद्दे को उन्होंने एक दर्दनाक अध्याय बताया है, उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की अपनी कोशिश में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में होने वाली आगामी मुलाकात का भी स्वागत किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। इस दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल और उनके ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबैंड के बीच मुलाकात होगी। बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अनुभवों को साझा करना। रुवांडा के SOS चिल्ड्रंस विलेज का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में है। इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बोबासै में उसका स्वागत किया गया। इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह एक AI फोर्स बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक AI 100 नियुक्त करेंगे। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब तेजी से उभरती इस टेक्निक के संभावित खतरों को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन AI उद्योग की ग्रोथ को किसी भी तरह बाधित या रोकने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने उन मांगों को भी खारिज किया जिनमें बेहतर सुरक्षा उपाय तैयार होने तक AI के विकास को धीमा करने की बात कही जा रही है। और उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्रिया सिबिगा ने सोमवार को यूरोपीय संघ की प्रतिबद्ध सूची से दो रूसी अरबपतियों के नाम हटाने के फैसले को अस्वीकार बताया। इससे पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों ने कारोबारी अलीशा उस्मानोव और मिकाइल फ्रीडमैन पर लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी, बशर्ते यूरोपीय संघ की कोई भी सरकार इस फैसले पर आपत्ति न जताए। दिन भर की घटनाओं का पूरा घटनाक्रम जानने के लिए उन्होंने कहा कि उनके अन्य खबरों के साथ

साथ जुड़ना होगा तभी वो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। और इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। अब हम बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुपामा दोगासामी पैदाशनाम पायानी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। क्लेफो नंबर एक फिनिक्स में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद रफीक लुतन जिन रफीक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके बेटे सलमान लुतन के मकान क्लेफो नंबर एक फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए राजाक मोहम्मद मस्जिद ले जाएगी। फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio
2: प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा भाई, वो भी ऑन रेडियो मस्ती. सो 549-912-94. ओहो, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बस पता चल रहा है कि आप इन गानों को कितना मजा ले रहे हैं. अमित मिठी, सुमित जियाना, रियाना, निखित, भोला, गुरुदेव, सीतोहल, बाहुश, पॉपुलर मुसल से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? दीदी अनिता बिमल फ्रॉम सुया बिहारी कोंगुमा से. और जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस गीत को पसंद करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, लेकिन जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे हम सफर हैं.

इस फ्रीक्वेंसी में अगर आप जैसे दोस्त ना हो तो कौन आएंगे. हाँ, थैंक यू सो मच. वेल, ये अगला गाना आपके नाम चलाती है, रिश्ता, प्यार का रिश्ता, दिल का रिश्ता निभा रही है. आप कहाँ पर हो? बॉन कुराज एंड बॉन कुराज टू ऑल दोस एट वर्क. तो बस ऐसे ही अपने मूड को मस्त बनाते चलिएगा. अगर आप बाजार में हैं, इस दिन में कुछ गर्मी सी लग रही है लेकिन रात को फिर से ठंड बारिश, जो भी हो मौसम एकदम लवली ऑसम है यहाँ पर. वीर नीति ऑन 5499294.

0: भाई बुलाकर तो देखिए, लेकिन दिल से बुलाना, देखना कोई भी आ जाएगा, पत्थर भी पिघल जाएगा। 1:21, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं, स्पेशली आपके लिए रेशमा, आपके दोनों डॉगीज बॉबी एंड पेटिटो, मेरे को वाओ वाओ कहने का मन कर रहा है, वाओ वाओ। 549-9294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच।
1: रेट्रो रिदम।
0: ऑलराइट, यहां पर बर्थडे विशेस आपके नाम, आइडिया ईशाली कालीचरण, और आप रहती हैं मोचीदा। सो स्पेशल बर्थडे विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपकी मामा शालू, पापा संजय, भाई सौरभ, नानी है सविता, नाना ज्ञानेश्वर, मामू है बाय, नितेश, लक्ष्मण फैमिली बाकवा से, ऑल्सो फ्रॉम कजन सिस्टर्स केमिशा एंड श्रिया, आंटी शीतल, अंकल विनय एंड नाइको फैमिली एंड सभी डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको, ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स टू यू। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और दिल जीतते रहिए।

अभी एक मैसेज आया है ऑल द वे फ्रॉम शायद यूके, कहते हैं कि वो खेलना चाहते हैं क्योंकि हमने कहा मैं आऊं आ जा कुकाशे जैसे बोलते हैं ना हाइड एंड सीक, तो बस ऐसे ही खेलते रहिए लेकिन दिल से मत खेलिएगा दोस्त।

0: इसी को कहते हैं म्यूजिक का जादू, संगीत का जादू, जो बिना दौर के किसी को भी खींच ले आता है।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: निशा भी है, नीतुषा भी है।
1: रेट्रो रिदम।
0: इतने सारे मैसेज है भाई, किसके पढ़ूं किसकी ना पढ़ूं, लेकिन आपका साथ मिल रहा है, थैंक यू सो मच। सिमला जी, आप उत्तरी ओली से नेक्स्ट गाना गुजारती हूं। गिनता रनुआ, आप रहती हैं लाबोच और आज आप 71 इयर्स की हो गई हैं, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। 100 साल जिए आप और 100 साल का प्यार 100 साल बाद भी रहे। आपके सभी डियर वंस की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यालेशन शाम फैमिली है सुरीनाम से साथ देने के लिए, थैंक यू। कैसे मिस्टर दीपक, और अच्छे लग रहे गाने? तो बस मजे लेते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और वट एवर यू माइट बी, देश में होंगे विदेश में होंगे, सात समुंदर पार होंगे, प्यार तो प्यार होता है भाई, चाहे वो आज का प्यार हो, कल का प्यार हो, या फिर परसों का प्यार हो।

0: रहेगा।
1: अगर आपका नाम ना पढ़ू तो डांट पड़ेगी मेरे को। बस ये रोजाना हमेशा का वाला प्यार है। सत्यानी फ्रॉम खुशबान देवी दिन परिवार, खास अशोक, कीर्ति, अखिल, अभय, अर्नब, आशा, किरण एंड योर डियर वंस।

0: एक बजकर 1:40 हुए हैं, चाहे आप घर पर होंगे, काम पर होंगे, व्हाटएवर यू माइट बी, रेडियो मस्ती आपके साथ, नीतू आपके साथ। तो ये वाला स्पेशल गाना गोज आउट टू यू स्पेशल पीपल, मिस्टर राजामणि आपके साथ है। तीन प्यारी सी देवियां, तीन देवियां हैं, काम पर हैं, सिलाई कर रही हैं, सुबों को गाश एंड एंजॉय दिस ट्रैक।
1: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा
0: है ना,

नॉट ओनली प्यारा लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ही सच्चा भी है, इसलिए कहते हैं प्यार करो तो उस प्यार को निभाते रहो, कभी किसी को धोखा मत देना, किसी के दिल को मत तोड़ना। हाँ निशान जी, आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आराम आपको, बस सुनते रहे।

0: और मुस्कुराते रहे। व्हाट्स ए नेक्स्ट गाना आप सबके लिए,
1: रेट्रो रिदम।
0: सो यहाँ पर है मिस्टर बाबू अनुतवा फ्रॉम बासाकाथुबोन, पूरे परिवार के नाम। अमिता जी है गुडलैंड से, पतिवेद, मेघना, नितेश एंड दिव्या, प्यारी से विश्वानी धूमन एंड फैमिली फ्रॉम वाकवा, एंड विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू मालिनी रामालिंगम, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रॉम टिंकी एंड स्पेशली आपके कॉलिग्स फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड डेफिनेटली आपके पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। नेक्स्ट गाना मैं देख रही हूँ कौन है, सेलू एंड फ्रेंड्स फ्रॉम एक्वायर। आपने क्या लिखा है मैं समझने की कोशिश करती हूँ, तब तक आप इस गीत को सुनते चले। और मिस्टर अशोक एंड शंकर परिवार, प्यारी सी पत्नी अंजनी कच्ची मिनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलते चलते ये वाला गाना आपके नाम।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: देखो भाई, इशारा तो पा लिया आपने कि मेरे जाने का टाइम भी आ गया है. ऑलरेडी 155 हमारे बाद बॉम्बे टॉकीज लेकर आ रहे हैं विकास. तो चलते चलते ये अंतिम गाना आपके नाम छोड़े जाते हैं. मिस्टर निशान स्पेशली आपके बेस्ट कॉलीग कहते हैं, नेपाली दोस्त है बिस्ता किम बहादुर. तो बहादुर बनते रहिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स. बाय बाय, स्टे सेफ.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: 22nd of September, Tuesday, then time check exactly 2 p.m. आगे स्टूडियो में उनसे मिलते जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चार दिनों की एक कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत

0: प्रस्तावित तंत्रों पर चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस पहल को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रांकोफोनी का समर्थन प्राप्त है। इसे सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बातचीत बताया है। कल दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नाम ने फोन पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बातचीत के केंद्र में जाहिर तौर पर शागुस का मुद्दा भी रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। बयान के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वे अमरीका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए समझौते को आखिरकार मंजूरी दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने लंदन के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने शागु समुदाय के लिए जिस मुद्दे को उन्होंने एक दर्दनाक अध्याय बताया है उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की अपनी कोशिश में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में होने वाली आगामी मुलाकात का भी स्वागत किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। इस दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल और उनके ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबान के बीच मुलाकात होगी। बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अनुभवों को साझा करना। रुवांडा के SOS चिल्ड्रंस विलेज का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में है। इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बुबासे में उनका स्वागत किया गया। इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिगा ने सोमवार को यूरोपीय संघ की प्रतिबद्ध सूची से 2 रूसी अरबपतियों के नाम हटाने के फैसले को अस्वीकार किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों ने कारोबारी अलीशा उस्मानोव और मिकाइल फ्रीडमैन पर लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी, बशर्ते यूरोपीय संघ की कोई भी सरकार इस फैसले पर आपत्ति न जताए। दिन भर की जो घटनाएं हैं उनके बारे में वो ज्यादा विस्तार से बताएंगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: MBC.mu. More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty. नीतू शाह के प्रोग्राम के बाद आपको याद की यस इज गोना बी बॉम्बे का टाइम यानी कि बॉम्बे टॉकीज लेडीज एंड जेंटलमैन बॉलीवुड की खबरें लेकर एक बार फिर से वापस चाहे बॉक्स ऑफिस रहने की बात हो रही हो या फिर ये नए प्रोजेक्ट की बात हो रही हो बात करने वाले हैं वी टॉक अबाउट लास्ट स्टोरीज और वहीं पर आवारापन के एक्टर की कहानी और वहीं पर आयुष्मान खुराना बंद नहीं कर रहे गुराना किस बारे में सलमान खान भी गुस्सा आ गए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि शर्ट फाड़ता हूँ असली में देख लो बॉडी 60 का और हूँ लेकिन फिर भी लोग पीछे ही पड़े हुए हैं एनीवेज वी गोना गो ऑन विद ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन ये है
2: मोर म्यूजिक इन द मिक्स
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती
1: रेडियो मस्ती

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty. जैसे हमारे जो बड़े बड़े सितारे हैं वो बड़े बड़े रियलिटी शोज भी करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सलमान खान. उन्हीं के सेट पर उन्हीं के शो में पहुंच गए सिद्धार्थ मल्होत्रा. राइट, ऐसी बातचीत होती चली गई और फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, बड़े टाइम तक तुमने संभाल के रखा, अंडर कवर्स रखा अपने रिलेशनशिप को कियारा आडवाणी के साथ. उन्होंने कहा कि हाँ, जब सही टाइम आया तो हमने सबको बता दिया. ये काफ़ी मुश्किल था लेकिन यस, इट हैड टू बी डन. और यही सिलसिला आगे बढ़ता गया. यस, दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेटी. कहते 15 महीने की हो गई लगभग और बहुत ही प्यारी सी बेटी है. कहते हैं बस चाहते हैं कि यही जिंदगी यूँ चलती जाए. सलमान ने कहा कि अच्छा है लेकिन दूसरे की खबर कब दे रहे हो. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उल्टी बात घुमा दी सलमान की तरफ, कहा कि आपका क्या कहना है बच्चों पर, शादी पर. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा है लेकिन अपने जो विचार है मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता. चलिए, अच्छी बात है, अपनी बात अपने तक रखने वाले हैं. लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब आने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिस मूवी जिसका नाम है विवान. राइट, विवान आए नहीं है ना बीच में. फोर्स ऑफ द नेचर. राइट, ये फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है और एक हिंदी एको थ्रिलर होने वाली है अनुराग कुमार की तरफ से. और साथ में आएंगी एकता कपूर बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ. 25 सितंबर के लिए ऑल सेट है. तमन्ना भाटिया भी इसमें होने वाली है. तो देखते हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, कमाल मचाए थोड़ी सी और धमाल. कांट फॉरगेट स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिद्धार्थ मल्होत्रा. क्या स्टार्टिंग, और देखो कहां पहुंच गया लड़का.
2: मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
0: आज आजादी है. Bombay Talkies. Radio Musty.
1: Radio

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

क्या ढोल बज रहे हैं भाई गॉड। अच्छा यहीं पर अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जिंदगी ना म्यूजिक बिना बिल्कुल नीरस है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। जब संगीत की ठोर आत्मा से जुड़ जाती है तो समय नादान हो जाता है। कहते हैं ऐसे हुआ जब मैंने म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू किया और लगता है कि बस अब तो केवल उनकी अपार प्रशंसा करने योग्य होने की अलावा कुछ कर नहीं सकते। माना कि जीवन के अंदर संगीत हुआ तो बहुत कुछ हुआ, हमारा काफ़ी टाइम निकल गया तो अब बस अप्रिशिएट ही कर सकते हैं।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti. चल बात करते हैं जंपिंग जैक की जितेंद्र साहब की और वो पहुंचे पुणे ट्यूसडे को टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा और उन्होंने कहा कि जो कनेक्शन है उनका महाराष्ट्र के साथ वो अटूट है। उन्होंने कहा कि जब बचपन की बात करें तो हम सेलिब्रेट करते थे गणपति के आने का और कहते मुश्किल था वो वक्त कि फिल्म में सक्सेस मिल जाए, लेकिन हाँ ये शुरुआत की बात है। कहते हैं कि दर्शन के लिए ज़रूर पहुँचते थे चाहे अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में ना हो, लेकिन फिर भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते कि गणपति बप्पा मोरिया की ब्लेसिंग्स मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। मैं बार कहते हैं कि चाहे कितना भी उम्र हो जाए ये जो ट्रेडिशन है उसको मैं हमेशा रखने ही वाला हूँ। जब तक दो पैरों पे चल रहा हूँ तब तक मेरी यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा आऊँ बप्पा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। मैंने कहा कि बचपन में हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम आएँ और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर माथा टेकें। कहते हैं बस ही वॉज ओनली पंजाबी, वो कहते हैं महाराष्ट्र और कोंकणी रीजन्स के बीच में, और कहते हैं कैसे वो गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते थे और 52 साल के लिए नियरली हमेशा कोशिश उनकी यही रहती थी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेडिशन बन जाती हैं और फिर चाहे कितना भी वक्त निकल जाए, लेकिन अच्छी बात यह है जो ट्रेडिशन है जो प्यार है ये हमेशा दिल से होना चाहिए। और यही कहते हैं कि मैं ज़्यादा महाराष्ट्रियन हूँ इनसाइड देन आउटसाइड, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये जो हम सेलिब्रेशन करते हैं और पूरा घूमते हैं सबसे मिलते हैं, ये कभी किसी ईगो या एटीट्यूड का मोहताज नहीं है। आज मैं जिस लेवल पर हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ये बहुत ज़रूरी है।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti. कमाल की म्यूजिक अरेंजमेंट, यस आशा जी के बाजी पर फिर से और ए आर रहमान का म्यूजिक साथ में जुड़कर, यू हर्ड दिस राइट। चलिए बात करते हैं हम सूरज बरजात्या की। साफ सुथरे पारिवारिक ड्रामे के लिए बहुत ही मशहूर हैं और एक बार फिर से अपनी नई फिल्म के साथ इतिहास दोहराने पर तले हुए हैं। वही सोच रहे हैं कि रोमांस हो और काफ़ी क्लीन मनोरंजन, तो उसके लिए उसकी जो मूवी है बिल्कुल तैयार है। मैंने प्रेम मोल ले लिया जल्दी आने वाली है। अब अगर प्रेम के संबंध में बंध गए हैं और आपने महसूस कर लिया वो मैजिक इन द टाइटल ट्रैक, तो आपको पता है कि श्रेया घोषाल की बहुत ही मेलोडियस आवाज़ है। एक बार फिर से उसी म्यूजिकल परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है सूरज बरजात्या। खास यही है कि इस खूबसूरत गाने में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व छठी मैया की पूजा की भी खास झलक है। इसमें आयुष्मान खुराना है और शर्वरी वाघ। प्रेम मोल लिया ये रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले जो टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ बहुत सारा प्यार उसको मिला। रिश्तों की गर्माहट हो, आपसी प्यार हो, रोमांस, बड़ों का सम्मान और परंपरा जैसी सारी चीजें दिख रही हैं, जहां जो आजकल दिखता है मूवीज के अंदर कुछ भी हो रहा है वो नहीं। सो इज गेटिंग बैक टू द बेसिक्स और जो फैमिली वैल्यूज हैं वो उनके लिए बहुत ही जरूरी।
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Time check exactly 3 p.m. बस थोड़ी देर में सुन पाएंगे हम संक्षिप्त समाचार, साथ जुड़े रहिए. मिलता अर्शिता से जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
4: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और अवैध मछली पकड़ने पर अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगाना, यही वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं. अल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में जहाज़ों की निगरानी दूर से और रियल टाइम में की जाती है. इसमें जहाज़ों की

0: लोकेशन के साथ साथ उनकी पकड़ पर भी नजर रखी जाती है। हालांकि इन नियमों को लेकर मछुआरों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मछुआरे इनसे जुड़ी पाबंदियों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने और इस डिजिटल बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। चीन के 77वें गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह 1 अक्टूबर को होंगे। मॉरिशस में हालांकि इन समारोहों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्टलिस में इस मौके को खास अंदाज में मनाया। इस अवसर पर चीनी संस्कृति से सजी एक विशेष शाम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती और मैत्री का संदेश भी दिया गया। मॉरिशस राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 दिनों की एक कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत प्रस्तावित तंत्रों पर चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस पहल को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रांकोफोनी का समर्थन प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिथुआनिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि रूस से संभावित खतरे को देखते हुए उनके देश ने इवैक्यूएशन की योजनाएं तैयार कर ली हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर लिथुआनिया पर हमला होता है तो उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। प्रधानमंत्री माइडाउगस सिंकेविचिस ने यह भी कहा है कि लिथुआनिया के लोग रूस की ओर से खुद को लगातार खतरे में महसूस करते हैं। इसकी एक वजह देश के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का प्रवेश भी है। उन्होंने कहा कि अगर लिथुआनिया पर हमला हुआ तो वे जवाब देंगे और वे मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अलग अलग संभावित परिस्थितियों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि बुजुर्ग नागरिकों को शहरों से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने और ट्रैफिक जाम से बचने की योजना भी बनाई गई है। लिथुआनिया नेटो का सदस्य है और उसकी सीमा रूस के कैलिनीग्राद क्षेत्र से लगती है। और उन्होंने ये भी कहा कि वे ठोस खतरों का सामना कर रहे हैं। ये रोज़ाना नहीं होता है, लेकिन वे इनका अनुभव कर रहे हैं और ये उनके लिए वास्तविकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। On NBC Play and NBC.mu.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: जैसा बात हो रही है बी टाउन की और अभी सुनने वाले की अजय देवगन इज ऑल सेट फॉर अ सुपरनैचुरल थ्रिलर. उसका नाम है सूर्य प्रकाश, जिसकी हम बात हम जरूर करने वाले हैं. वहीं पर बात करेंगे हम हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में. बन गई चौथी टॉप फिल्म 46. देख क्या कमाल हुआ. चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं. और वहीं पर अगर हम बात करें भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कौन सी वो टॉप 10 फिल्म्स हैं, तो बहुत कहानी अभी बाकी है. वेलकम टू द सेकंड आवर कंटिन्यू सिल फॉर ये है
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

ये कोई नई बात नहीं कि जो हमारी बॉलीवुड की कुछ मूवीज होती हैं उनके जो गाने पहले से पॉपुलर हैं उन्हीं को शामिल किया जाए इन देयर सीक्वल्स, और सीक्वल भी ना कहें अगर सेम नेम का इस्तेमाल किया गया है तो। गॉट फेमस इमरान हाशमी और आवारा पंटू

0: टॉकीज रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती
2: सुनते रहो
3: और उसके बाद हमें यूं ही चुनते रहो क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं। चलिए साहब, हम बात करते हैं कि कौन सी वो मूवीज हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड की वो मूवीज जो भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन कर पाई, टॉप 10 फिल्म। चलिए, पुष्पा 2 द रूल, यहाँ पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रूल का नाम है और 2024 में इस फिल्म ने पहले दिन देश में 32,140 शो से 164 करोड़ की लगभग नेट कमाई की थी। वहीं पर आरआरआर, ये तो जरूर है कि जो साउथ की मूवीज होती हैं वो लार्जर देन लाइफ होती हैं, उसमें कुछ अलग ही फॉर्मूला होता है। आरआरआर ने भी कुछ ऐसी कमाल किया। वहीं पर बाहुबली, इसने तो ऐसी कहानी बना दी कि पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलसिला शुरू हो गया। 2017 में पहले दिन देश में 121 करोड़ का नेट कलेक्शन, ओ माय गॉड। वहीं पर केजीएफ चैप्टर 2, एक अलग स्टाइल की कहानी। टॉप 10 की लिस्ट में चौथे नंबर पर यश की केजीएफ चैप्टर 2 है जिसने 2022 में पहले दिन भारत में 116 करोड़ की नेट कमाई की। वहीं पर धुरंधर 2 द रिवेंज जहां पहुंच गई पांचवें नंबर पर लिस्ट की एकमात्र बॉलीवुड फिल्म रणवीर सिंह के नाम, धुरंधर 2 द रिवेंज, जिसने इसी साल 2026 में ओपनिंग डे पर 102 करोड़ की नेट कमाएगी। टॉक्सिक, जहां पर काफी मिक्स रिव्यूज है, कह सकते हैं फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, छठे नंबर पर नई एंट्री यश की टॉक्सिक है जिसने पहले दिन कह सकते हैं कि 100 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर कमा लिया। कालकी 2098 AD, इसके अंदर भी बहुत सारी कहानी आ गई थी एक साथ स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, लेकिन 2024 में ओपनिंग डे पर 95 करोड़। प्रभास के नाम पड़ी सलार पार्ट 1 सीज फायर, ओपनिंग डे अच्छा रहा, नेट कमाई लगभग 100 करोड़ की ग्रॉस कमाई थी। वहीं पर आदि पुरुष 9वें नंबर पर इतनी नहीं चल पाई, लेकिन ओपनिंग डे पर भारत में 86 करोड़ की नेट कमाई कर पाई थी। और नंबर 10 पर देवरा, इसके अंदर जूनियर एनटीआर की देवरा पहुंच गई और 98.02 करोड़ की ग्रॉस कमाई की थी। बस कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में चाहे बड़ी पिक्चरों की बड़ी कमाई पर नजर ना हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि अच्छी स्टोरी हो, अच्छा प्लॉट हो तो कोई भी खरीद लेता है। प्लॉट नहीं, स्टोरी। आगे चलें।

0: कुछ मूवीज इतनी पॉपुलर होती हैं कि उसके बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। टॉकिंग बाद दृश्यम 3 अजय देवगन की, वहीं पर हम बात करते हैं एक सुपर नेचुरल थ्रिलर के बारे में, हॉरर थ्रिलर एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ी देर बताने वाला हूँ। लेकिन दृश्यम के बारे में सुना, वो क्या था, वो पाव भाजी कहाँ गए थे?
1: हर साल 2 अक्टूबर को मैं मेरे बेटे से नजर नहीं मिला सकता, वो मुझे मेमे भेजती है। पापा पता है ना, 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली सत्संग गए थे, वहाँ पे उनने पाव भाजी खाई थी। 3 अक्टूबर को वो वापस आए थे। विजय का ना टाइम अच्छा चला, नहीं तो अपने थिएटर में नहीं, हमारे जेल में बैठा होता।

0: में निशानी हो जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना समझो उसका खराब टाइम शुरू
1: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty. साहब यहाँ पर अजय देवगन काफी अभी कहते हैं कि उनको देखना चाहते हैं लोग, हम बात करें दृश्यम की, यहाँ पर पहुंच गए लोग देखने के लिए ग्लिम्स ऑफ हिज 16 ईयर ओल्ड सन। राइट, वैसे हम हमेशा सुनते हैं कि युग उनका नाम है और साथ साथ में क्या करने वाले हैं ये तो पता नहीं, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली। हाँ, लेकिन ये सच बात है कि हम अगर बात करें अजय देवगन की आने वाली फिल्म के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इट्स गोना बी एन अपकमिंग हॉरर थ्रिलर डायरेक्टेड बाय रोहित जगराज। ऐसे कहते हैं कि बहुत ही अलग स्टाइल का एक नरेटिव होगा, अलग स्टाइल की कहानी होगी और इंस्पिरेशन है गरुड़ पुराण से, एंशंट संस्कृत टेक्स्ट। वैसे कहते हैं एक कॉन्वर्सेशन लॉर्ड विष्णु और गरुड़ा द किंग ऑफ बर्ड्स के बीच में। वैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 2 सितंबर को और कहते हैं कि पार्टनरशिप तो पहले रिजल्ट दे चुके हैं, दृश्यम हो, रेड हो, शैतान हो, तो बहुत कमाल की मूवीज़ हो चुके हैं पहले, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कह सकते हैं कि अब कुछ अलग ही सस्पेंस होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या किस स्टाइल में या फिर किस रूप में नज़र आने वाले हैं। कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत कमाल की होने वाली है, चाहे बिहाइंड द कैमरा हो या आगे। ये हो गया अजय देवगन की इन्वॉल्वमेंट, डिलाइटेड हैं, बहुत बहुत खुश हैं और कहते हैं हमारी जो एसोसिएशन है देवगन फिल्म्स के साथ वो चलती रहने वाली है। चलिए साहब दिल लगाइए, कैसा लग रहा है हमें बताइए।
2: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती में गणेश ऑलरेडी हियर ऑन द माइक आपका साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।

0: Thank you so much saath dene ke liye on Radio Masti. Check your time, it's already 4 PM.
1: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le Spicy Chicken Fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local. Du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout, trois façons d'en profiter. En burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
2: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: Le nouveau Spicy Chicken Fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार गी निशा, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अनुभवों को साझा करना. रांडा के SOS चिल्ड्रंस विलेज का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में आया है. इस संदर्भ में इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बुबासे में उनका स्वागत किया गया. इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है. चीन के 77वें गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह 1 अक्टूबर को होंगे मॉरिशस में. हालांकि इन समारोहों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है. हिन फो लिन क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्ट लुइस में इस अवसर को खास अंदाज में मनाया. इस मौके पर चीनी संस्कृति से सजी एक विशेष शाम का आयोजन किया गया जिसमें पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती और मैत्री का संदेश भी दिया गया. समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और अवैध मछली पकड़ने पर अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगाना यही

एसएल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में जहाजों की निगरानी दूर से और रियल टाइम में की जाती है। इसमें जहाजों की लोकेशन के साथ साथ उनकी पकड़ पर भी नजर रखी जाती है। हालांकि इन नियमों को लेकर मछुआरों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मछुआरे इनसे जुड़ी पाबंदियों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने और इस डिजिटल बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, हम 4 महीने और 2 और 9 दिन के बाद दुनिया की 2 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति फिर मिल रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 14 मई 2026 को मुलाकात हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन दौरे पर गए थे। इस बार अंतर सिर्फ इतना ही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत वॉशिंगटन में होगा, जो 23 से 25 सितंबर 2026 तक अमरीका की सरकारी यात्रा रहेंगे। वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर जा रहे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों की मुख्य मुलाकात 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता अमेरिका चीन संबंधों से जुड़े अहम मुद्दों के साथ दुनिया में शांति और विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। हालांकि मुलाकात का पूरा विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। On NBC Play and NBC.MU. Raftar Vibes. Filmy Rides. RM2.

0: वाइब्स, यानी कि इट्स योर फिल्मी राइट्स, लेके जाते हैं फिल्मी राइट्स की दुनिया में, यानी कि अच्छे अच्छे बॉलीवुड गाने आपको सुनाएंगे और साथ साथ में कुछ अच्छे अच्छे गॉसिप भी करेंगे, जैसे कि हम स्टूडियो में बैठे बैठे गॉसिप कर रहे हैं. इट्स मी अनाशिता, गुड आफ्टरनून.
1: सुपर गुड आफ्टरनून टू यू गिनी, एंड हमारे सभी जो श्रोता हैं उनको भी हम कहेंगे वेलकम टू वेलकम. इट्स योर रफ्तार वाइब, एंड यहाँ पर वाइब के बारे में बात करते हैं तो लेट अस ऑल्सो टेल देम कि यहाँ पर गिनीशा जो होने वाली है वो होने वाली है रात के 7 बजे तक. सो डेफिनेटली शी इज प्रॉमिसिंग यू, वेल आवाज अभी मेरी है लेकिन प्रॉमिस उनकी है यहाँ पर. शी इज प्रॉमिसिंग यू दैट शी इज ब्रिंगिंग फॉर यू द बेस्ट ऑफ वाइब, द बेस्ट ऑफ म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स गप शप, बातें शातें, मुलाकातें.
0: बिल्कुल जी, ये सब तो होते ही रहेंगे. लेके जाएंगे हमारे बॉलीवुड की दुनिया में, लेके जाएंगे फॉर योर ट्रैफिक न्यूज, हम लेके जाएंगे सम फैशन की दुनिया में और बहुत कुछ होने वाला है. सो जस्ट सिट यू एंड स्टे कनेक्टेड ऑन RM2 रेडियो मस्ती, और फिलहाल के लिए जस्ट गेट रेडी टू ग्रूव विद मी ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक अलका याग्निक एला अरुण की आवाजों में. जी हाँ दोस्त, लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, तैयार हो आप? गो बैक टू some lovely memories.
1: Loving it. And here we go. That's the best of the 90s for you.
2: RM2 Radio.

0: अरे 3 बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो।
1: किसने बोला कि हम आए नहीं, हम तो आ गए हैं जी आपका साथ देने के लिए, खेतों में नहीं लेकिन ऑन द RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर ऑलरेडी हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली एंड आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन फॉर दिस आफ्टरनून, ताकि हम आपके होंठों पर मुस्कुराहट लेकर ही आए। रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

0: सच ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का ये सिलसिला तो हम लेकर ही आए हैं आप लोगों के लिए. वैसे अगर आप ऑफिस में हो, घर पे हो, ट्रैफिक में हो या बस अपने फेवरेट कोने में चिल कर रहे हो, आप जहां भी शहर से हमारा साथ दे रहे हो, आई जस्ट होप दिस आफ्टरनून ब्रिंग्स यू अ लिटिल स्माइल एंड लॉट ऑफ गुड एनर्जी. सो कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन RMT रेडियो मस्ती. कीप स्माइलिंग. रफ्तार वाइब्स शो ओनली ऑन रेडियो मस्ती फॉर यू.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News,
4: Radio Musti, in the mix.
0: It's already 4:48 on RM2 Radio Musti. Jahan dosto, it's time to take you for some latest sports news. Sports ki dunya mein. Aage hai hamare Mr. Vin, Sports Guruji. Good afternoon to you.
3: This magazine was brought to you by Quality.
5: Good afternoon, Apko. Good afternoon, RM2 listeners. The latest from the sports world.
6: पिछले तीन हफ्तों के लिए इंटरनेशनल ब्रेक, छुट्टी केवल लीग के लिए, पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका होगा. इंग्लैंड की टीम में एक के बाद एक इंजुरी क्राइसिस. चिनो लिवरामेंटो, कोबी माइनू, कोल पाल्मर, मार्कस राशफोर्ड और डेक्लन राइस इंग्लैंड

0: के लिए इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएंगे। कोच टोमास टुखेल के लिए समस्या गंभीर। मोगन गिब्स व्हाइट और जेम्स गार्नर को इमरजेंसी बुलाया गया है। इस शनिवार को इंग्लैंड का सामना वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से होगा वेम्बली में। इसके बाद 28 सितंबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच, 3 अक्टूबर को क्रोएशिया के खिलाफ और फिर 6 अक्टूबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच है। ये सभी मैच नेशंस लीग के लिए हैं। ग्रुप 3 में इंग्लैंड की टीम है। टीम टॉक के अनुसार लिवरपूल फेयेनोर्ड के 20 साल के राइट बैक गिवारो रीड को मॉनिटर कर रहा है, पर मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल भी उस पर रुचि दिखा रहे हैं। गिवारो रीड नेदरलैंड्स का अंडर 21 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इधर एशियन गेम्स में 13 साल की यू जीडी ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता। इस बार 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में चैंपियन बनी, फिर से चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ। इससे पहले 200 मीटर बटरफ्लाई में भी यू जीडी गोल्ड मेडल जीत पाई थी। आईटी नागोया जापान में लग रहे इन खेलों में अभी तक चाइना 23 गोल्ड मेडल जीत पाया है, टोटल 38। फिर जापान 8 गोल्ड मेडल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 5 गोल्ड मेडल। और आज भारतीय टीम को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला। ये एशियन कप वुमेन्स टीम टूर्नामेंट क्रिकेट में है, जहां पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया। दे बिकेम द एशियन चैंपियन 147 रन्स से जीत। भारतीय टीम ने 216 रनों का टारगेट रखा। मंदाना 79, श्रीलंका 69 पर आउट। सो द एशियन चैंपियन भारतीय टीम। उधर भारतीय पुरुष टीम ने जापान को एक गला मैच में हराया, 2 विकेट से 5 रनों का 5 ओवर का मैच रहा। और इंग्लैंड में आर्टेटा अपना नया कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, एक इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, $10 million पर ईयर और $5 million बोनस के रूप में उसे दिए जाएंगे। So that's it, the latest from the sports world. I'll catch you tomorrow morning. Till then, enjoy the music on Radio Masti. Take care. Bye-bye.
1: Thank you so much, Arvind ji.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Decor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Decor, pour ne pas manquer nos offres

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: to you. Radio Musti.
1: Radio Musti. AM to PM.
0: Check your time, guys. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:15 तो बज चुके हैं. जी हाँ दोस्त, भागता चला जा रहा है. But still we are here with some good music. Wishing all of you a very good afternoon. Namaskar, Ganesha ka pranam and welcome on board. That's the second hour of this beautiful show, Your Raftaar Vibes. That's the filmy rides. जहाँ पे हम आपको लेके जाते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पे गाने ही गाने हो और we just bring the positive vibes in your life. You're driving right now है ना, काम से निकल चुके हैं, थके हुए हो, but it's only Tuesday यार. अभी तो ये जो हफ्ता है शुरू हुआ है. So just shake it off and keep on the positive mood, my dear. और फिलहाल के लिए stay tuned and stay connected. हमारे साथ I've got you beautiful गानों का selections. Here we go. This one goes out to you.

बिल्कुल जी, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. टोल दोस वर ड्राइविंग, हम तो बस इतना कहेंगे ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना. एंड टोल दोस वर स्टिल एट वर्क, आर यू वर्किंग राइट नाउ? इफ यस, देन मोर कुराज टू यू माय डियर, एंड दिस ट्रैक गोज आउट टू यू. आर एम टू रेडियो.

0: बिल्कुल जी, हैप्पी होते हैं तो डांस तो करना चाहिए और म्यूजिक तो हम लेकर आए हैं ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: ऑरेंज फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
0: बिल्कुल जी, लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट फैशन टिप्स आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन इजीली बी समवन जो बिल्कुल फैशनेबल दिखे और बिना ज़्यादा एफर्ट किए हुए। लेकिन हमेशा याद रखना कि सिंपल टिप वही होते हैं जो आउटफिट सिंपल हो लेकिन एक्सेसरीज एक स्टेटमेंट पीस रखिए हमेशा, और एक ब्यूटीफुल वॉच, ईयर रिंग्स या नेकलेस पूरे लुक को हमेशा एलिवेट करते हैं। सो हमेशा याद रखो कि आप अपने एक्सेसरीज को हमेशा अच्छा रखो। एंड यस, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ब्लैक कलर। हमेशा क्या होता है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट कलर, इट्स ब्लैक। एक्चुअली ब्लैक इज ऑलवेज अ सेफ चॉइस। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या पहनना है लाइफ में, हमेशा याद रखें कि अ क्लासिक ब्लैक आउटफिट कैन नेवर गो रॉन्ग एंड आउट ऑफ फैशन, क्योंकि ब्लैक इज फैशन।
2: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: 22 सितंबर मंगलवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने शागोस द्वीप समूह से जुड़ी संधि को मंजूरी देने के लिए मॉरिशस और अमरीका के साथ मिलकर काम करने की कटिबद्धता जताई। इस संदर्भ में उन्होंने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ फोन पर बात की। दोनों सरकारी नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की और संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र की 51वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में एकत्र हुए हैं। अगले 28 सितंबर तक वे बारी बारी से एजेंडा में शामिल मुद्दों पर बात करेंगे, जिनमें मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और गाजा के हालात शामिल हैं। समुद्री संसाधनों का बेहतर संचालन और गैर कानूनी मछली मार गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष, ये वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। स्थानीय मछुआरों की आशंकाओं को दूर करने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया तेज करने के वास्ते जल्द ही नियमों में संशोधन किए जाएंगे। जोरदार चक्रवर्ती तूफान दुजों ने जापान में काफी तबाही मचाई, कम से कम 4 लोगों की मौत और कई अन्य लापता। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने शागोस द्वीप समूह से जुड़ी संधि को मंजूरी देने के लिए मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की कटिबद्धता जताई है। साथ ही उन्होंने जिगोगाशा सैन्य अड्डे की गतिविधियां जारी रखने तथा यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का भी आश्वासन दिलाया। इस संदर्भ में उन्होंने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ फोन पर बात की। दोनों सरकारी नेताओं ने आपसी हित के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की और संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। इस पर सिंचा मुतु की रिपोर्ट पर गीता नारायण का विवरण।
1: प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर मिलकर काम जारी रखने की इच्छा जताई। इनमें 22 मई 2025 को हुए शागोस द्वीप समूह समझौते का मुद्दा भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने दोहराया कि वे अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते की पुष्टि के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। ब्रिटेन का मानना है कि उसकी सुरक्षा के लिए जेगोगाशा स्थित सैन्य अड्डे का इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपने ब्रिटिश समकक्ष को शागोस के लोगों के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने की दिशा में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। एंडी बर्नम ने ये भी कहा कि कई क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों को साझा लाभ मिल सकता है। इनमें जलवायु परिवर्तन से निपटना, वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई तथा आर्थिक विकास और व्यापार को मजबूत करना शामिल हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। बताया गया है कि इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलीबैंड और मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल की मुलाकात होगी। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करना है।
0: दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में एकत्र हुए हैं। अगले 28 सितंबर तक वे बारी बारी से एजेंडा में शामिल मुद्दों पर बात करेंगे, जिनमें मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और गाजा के हालात शामिल हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक हालात काफी गंभीर हैं, खासकर बढ़ते मानवीय संकट और तेजी से बिगड़ती जलवायु इमरजेंसी की वजह से। आधिकारिक तव्यों के अलावा कई अनौपचारिक बैठकें भी लगाई जा रही हैं, जैसे कल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक लगी। राष्ट्रसंघ की इस 81वीं महासभा के अंतर्गत नए महासचिव का चुनाव भी होगा। इस पर सिल्वाना परिमामन की रिपोर्ट पर करुणा आलू का विवरण।
2: 130 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि आज से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का रुख कर रहे हैं। भरोसा बहाल करने, परिवर्तन को प्रबंधित करने, सभी की सेवा में संयुक्त राष्ट्र का संगठन थीम के तहत ये सत्र लगाया जा रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति और विश्व की स्थिरता तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर वक्तव्य केंद्रित होंगे। यूक्रेन युद्ध भी है जिसके लिए समझौता फिर से शुरू होने से हल्की उम्मीद नजर आई है। इस वास्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन का आज इंतजार है। शायद पिछले साल के मुकाबले इस मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की अधिक प्रतीक्षा होगी। आज शुरू हुई आम बहस के दौरान भावी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया पर आदान प्रदान करने का भी अवसर होगा, जिसका कार्यकाल 2027 में शुरू होगा। अंटोनियो गुटेरेस के उत्तराधिकारी बनने के लिए 7 उम्मीदवार हैं, 4 महिलाएं और 3 पुरुष। संयुक्त राष्ट्र संगठन के नेतृत्व में 10 साल तक रहने के बाद उन्होंने अपने आखिरी राष्ट्र सभा की शुरुआत की। 31 दिसंबर को वे संघ से अलग हो जाएंगे। सभा से इतर संचालकों के बीच कई मुलाकातें भी निर्धारित हैं। कल इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पेट्रोल के दाम घटाने के लिए कई संभावनाओं का उल्लेख किया। इनमें राष्ट्र संघ में एक ऐसे प्रस्ताव का पारित करना शामिल है जिससे होर्मुज जलमार्ग में अवरोध दूर हो और हुती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी तेल ठिकानों की रक्षा हो सके।
0: समुद्री संसाधनों का बेहतर संचालन और गैर कानूनी मछली मार गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष, ये वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। अल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में दूर से लेकिन वास्तविक समय की निगरानी की जाती है, जिसमें जहाज़ों की स्थिति और मछली मार की ट्रैकिंग दोनों शामिल हैं। हालांकि मछुआरे इन नियमों को लेकर सहमत नहीं है, कईयों को कुछ शर्तों से आपत्ति है। अधिकारियों के अनुसार इन आशंकाओं को दूर करने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया तेज करने के वास्ते जल्द ही नियमों में संशोधन किए जाएंगे। ड्रग तस्करी की जांच के सिलसिले में हिरासत में ली गई एक फ्रांसीसी महिला का कहना है कि वह एक पुलिस अधिकारी की मदद से आधी रात को सुदनाक पुलिस स्टेशन में अपने सेल से बाहर निकली और फिर उस अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसका कहना है कि ये सब आपसी सहमति से हुआ था। एमसीआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कई सवाल उठते हैं। हिरासत में रखी गई कोई महिला अपने सेल से बाहर कैसे निकल सकती है और इस बारे में कानून क्या कहता है, इस पर हम फिर से पुनः वापस आएंगे। एक राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में मॉरिशस तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में शामिल मेकानिज्म पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी और कई अन्य साझेदार 4 दिनों की एक कार्यशाला के लिए एकत्र हुए। मकसद

0: रहा देश में जलवायु से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना। इस पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रांकोफोनी संगठन का समर्थन प्राप्त हुआ है। मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मोरीबा आले ने इस सोमवार दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के कई क्षेत्रों पर केंद्रित रही।
1: मॉरिशस और गिनी के बीच एक संयुक्त आयोग कायम किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है और प्रोग्राम कायम करने में आसानी प्रदान करना और समान परियोजनाएं कायम करना है। इस पहल से दोनों देशों को अपने अनुभव बांटने और सहयोग मजबूत करने का मौका मिलेगा। मोगिबा आले को ने कहते हैं,
2: La Guinée a beaucoup à apprendre de Maurice.
1: गिनी को मॉरिशस से बहुत कुछ सीखना है। मैं अफ्रीकी देशों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और सहयोग पर विश्वास करता हूँ। मॉरिशस के पास कई सेक्टरों में अनुभव हैं, जैसे पर्यावरण, मत्स्य उद्योग, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, कृषि, फाइनेंस आदि। हम चाहते हैं कि वो गिनी के साथ अपना अनुभव बांटे।
2: La pêche, l'économie bleue, comme le tourisme, comme l'agriculture, comme les finances, pourraient éventuellement partager l'expérience avec la Guinée, qui a également beaucoup d'expérience en matière minière.
1: मॉरिशस के लिए नामजद होने से पहले मोरीबा आले कोने दक्षिण अफ्रीका में गिनी गणराज्य के राजदूत थे। उन्होंने न्याय मंत्री का पद भी संभाला है।
0: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह का आधिकारिक जश्न 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मॉरिशस में समारोह पहले ही शुरू हो चुका है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्ट लुइस में इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें चीनी संस्कृति की झलक दिखाई गई, पारंपरिक प्रस्तुतियां हुई और मॉरिशस व चीन के बीच दोस्ती का संदेश दिया गया। प्रियंका की रिपोर्ट पर करुण लालू का विवरण।
3: ड्रम, लायन डांस और पारंपरिक नृत्य हिन फो ली क्वान सोसाइटी मॉरिशस के सबसे पुराने हक्का संगठनों में से एक है, जो 150 साल से ज्यादा समय से मॉरिशस में चीनी संस्कृति और विरासत की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। आमिन लिम्फाक ने कहा, चीन गरीब देशों की मदद के लिए तत्पर है। चीनी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में मल्टीपोलर विश्व का उल्लेख किया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 77वीं सालगिरह के मौके पर संगठन ने अपने सदस्यों को इकट्ठा किया। पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का जश्न मनाया गया, लेकिन संस्कृति से परी चीन मॉरिशस का एक अहम साझेदार है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा, मित्रता का मतलब उस वक्त मौजूद रहना है जब एक देश को मदद की जरूरत हो। 2019 में जब मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में शागुस के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग की थी, तो चीन हमारे साथ था। पेइडिंग ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़े हैं और ठोस सहयोग भी बढ़े हैं। मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को लेकर भी चीनी समुदाय की अहम भूमिका है। एक शाम जो 150 से ज्यादा सालों की विरासत, हस्तांतरण और योगदान को दिखाती है, साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती के रिश्तों का जश्न भी मनाती है।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि जोरदार चक्रवाती तूफान दुजो ने जापान में काफी तबाही मचाई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों पर एक विशेष रिपोर्ट अदिति अवतार की ओर से।
4: जापान में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजवान के प्रहार से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। टोक्यो के आसपास हजारों घर बिजली सेवा से वंचित रहे। मूसलाधार बारिश के चलते कुछ इलाकों में बाढ़ उतर आई और भूस्खलन हुआ, जिससे

0: 6 लोगों के लापता होने की भी खबर है। उनकी तलाश के लिए कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। आज सुबह दुजवान जापान से दूर हटकर प्रशांत महासागर में पहुंचा, जिससे जापान में सभी चेतावनियां हटा दी गई। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस बुधवार से ईरान की सभी विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बैन की जा सकेंगी। साथ ही वॉशिंगटन ने उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी धमकी दी है जो ईरानी एयरलाइंस को सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रख रही हैं। ईरान की अर्थनीति को कमजोर करने के उपायों के तहत अमेरिका ईरान के ऊर्जा, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, गोल्ड तथा डिजिटल एसेट सेक्टरों को भी निशाना बनाने का दावा कर रहा है। G7 देशों ने यमेनी हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब के खिलाफ हमले रोकने की मांग की है और साथ ही रियाद के प्रति समर्थन जताया गया है। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में सऊदी अरब पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों के नेताओं ने ईरान से हूती विद्रोहियों को गलत समर्थन देने से पीछे हटने को कहा है। साथ ही यूके ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता पहुंचाए जाने की कटिबद्धता भी जताई है। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड आज एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये संधि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान तय होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा की स्थायी जिम्मेदारी मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 प्रमुख न्यूज एजेंसियों CNN, पॉलिटिको और MS Now पर बैन लागू किया है, जिसके जवाब में कई अन्य मीडिया नेटवर्क्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को कवरेज देने से साफ मना कर दिया और इस मामले को अदालत में घसीटा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैन के पीछे इन मीडिया हाउसेस द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने का कारण बताया। दूसरी तरफ आज से व्हाइट हाउस ट्रंप TV की लॉन्चिंग कर रहा है, जो 24 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति को कवरेज देगा।
1: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर। आम हालत, पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज रात से प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और कुछ देर के लिए सामान्य रूप से थोड़ी वर्षा होगी। दिन में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर बारिश होगी तथा अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। हवा रात के दौरान हल्की बहेगी और कल दिन के दौरान पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और कल दोपहर बाद धीरे धीरे खराब होता जाएगा। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की लहरें उठेंगी। समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, कल 23 सितम्बर 2026 को इक्विनॉक्स होगा, यानी जब उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में यानी हेमिस्फीयर में दिन और रात दोनों का समय सामान्य अवधि का होता है। आज सूर्यास्त शाम 6:05 पर और कल सूर्योदय सुबह 5:59 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम अब शोक समाचारों की ओर।

0: 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गौरी गनू पैदा शंपादिया और जिन्हें पर्वत के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे तासैन गनू के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2:30 PM एवेन्यू रोज वेडर में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रामबावती अनमोल पैदाश नाम दिगंबर और जिन्हें कविता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके पति श्री दनेश अनमोल के घर वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तोस की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1:30 PM ओ एस ए स्कूल लेन मोनाको में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री नारद कैंताल जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:45 पर उनकी पत्नी श्रीमती शामिला कैंताल के घर बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11:45 PM बालिसों रोजबेल में 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुपामा दोगासामी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेंद्र दोगासामी के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM बारन लेन बेलेरिव्यसेश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज ओजाइब जिन्हें संजय दत्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स कॉम्पोरन पोस्ट डिफ्लैक में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय आनंद गजाधर जिन्हें भीम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे अविनाश गजाधर के घर पोस्ट डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM एवेन्यू मुताई लाबुत में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाश नाम चेदी और जिन्हें जेल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 11 बजे उनके घर लाबुत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज ले सालिन की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन ऑन थर्सडे एट 11 AM डोमेन जुमूलैन गुडलैंड्स में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवी गोविंदन पैदाश नाम मुकैन और जिन्हें मालिनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे योवन गोविंदन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहोश गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM मोदेजिया वाकवा में 29 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री रिकेश बिलाव की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती आरती बिलाव के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 12:30 PM बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुपामा दोगासामी पैदाशाम पाइनी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM एम्पास सहाय रोथ रॉयल गुडलैंड्स में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धुनवंती सहाय जिन्हें पति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे गोई दामरी के घर गुडलैंड से उठाकर बुआरूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई गई। अंतिम संस्कार के लिए क्रीमेटेड टुडे एट 2 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। Your news on NBC Play and NBC.MU.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: RM2 Radio Musti.
1: बजकर 27 मिनट हो चुके हैं. वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. वेलकम ऑन बोर्ड जहाँ पे हम अभी भी आपका साथ दे रहे हैं रात के 7 बजे तक. जी हाँ दोस्तों, ये है आपका रफ्तार वाइब्स इन द थर्ड आवर. आप सभी म्यूजिक लवर्स का स्वागत है. तो चलिए जी, जैसे कि आपको पता है आपके डेडिकेशन आपने बड़े प्यार से भेजे हैं हमें ऑन 5499124 पर. तो ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे दागन श्वेता रवि स्पेशल अविशा के लिए जो रोशनवा से हैं. एंड फॉर यू अर्शद एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम रेबिका की तरफ से. एंड ललिता जीतन जी, ये है अगला गाना आपके लिए टू विश हैप्पी बर्थडे टू मिस शीना. शी वर्क्स एट पोर्टवीस स्कूल में. सो बेस्ट विशेज आपके सारे कोलीग्स टीचर्स की तरफ से एंड कुमार देवीचंद जी के लिए. एंड जो पेरबेब के रहने वाले हैं आप साथ दे रहे हो. तो ये अगला गाना आपके नाम मामा कविता पापा आनंद एंड हस्बैंड की शेफ के लिए. एंजॉइंग योर सॉन्ग सिलेक्शन गिनिशा. सो ये अगला गाना उनके नाम. थैंक यू सो मच जी फॉर सच ब्यूटीफुल मैसेजेस. एंड द नेक्स्ट वन हमारी तरफ से आपके नाम.

0: बन जाइए इस दिल के मेहमान और बहुत ही प्यार से आपको भी हम न्योता दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं इस सलाम इश्क वाले शो में, जहां पर हम प्यार से आपको लेकर चलते हैं तारों की दुनिया में, जहां पर बस प्यार ही प्यार है। और अगर आप देखें तो आसमान में हज़ारों करोड़ों तारे हैं, बस इन तारों के बीच में एक अकेला चांद है। और ये चांद कभी अकेला नहीं है, क्योंकि ये इतना चमकता है कि इसके चमकने से ही बाकी तारों को टक्कर दे जाती है। ज़िंदगी में आपको ऐसे ही बनना है, यू नीड टू बी अलोन बट यू स्टिल नीड टू शाइन। हाँ, ये अच्छी बात है कि जब ज़िंदगी में हम अकेले पड़ जाते हैं, ऐसे में जब किसी का प्यार मिले, किसी का साथ मिले, तो ऑफकोर्स इसको ज़िंदगी में आगे लेकर चलना चाहिए। ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी की सीख बन जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में एक खूबसूरत पल बनकर, और यही पल हम हमेशा हमेशा आपको यहाँ पर देना चाहते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, ताकि हर पल को आप भी यादगार बनाएं एंड यू ट्राई टू मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो चलिए, हमारे गाने हैं आपकी मदद करने के लिए टू क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। 7:07 हो चुके हैं, 22 सितंबर 2026, इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग। मंडे के बाद ट्यूसडे सब लोग काम के रंग में ढल ही जाते हैं, और धीरे धीरे करके आता है मिड वीक मस्ती, जहां पर वेंसडे के दिन में सब लोग इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वीकेंड भी आने वाले हैं। तो चलिए, अभी वीकेंड पर इतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम फोकस करेंगे हमारे स्लो इवनिंग्स पर, जिनका इंतज़ार सब लोगों को होता है। आज भी आप लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब ये शो आएगा और आपको मौका मिलेगा टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लिसन टू दीज ब्यूटीफुल गाने। एंड ऑफकोर्स खूबसूरत ही नहीं, बल्कि ये गाने इतने सूदिंग होते हैं कि दिल को छू जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि अगर आपका काम अभी ख़त्म हुआ है, तो इसी रफ्तार से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़े, यानी कि धीरे धीरे, क्योंकि हमारे गाने की स्पीड भी वैसे ही है, धीरे धीरे बट श्योरली आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच ही जाएंगे। हम आपके मंजिल के बारे में बात कर रहे हैं और प्यार की मंजिल के बारे में भी। सो चलिए, दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती लेकर आए हैं बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज। एंड डोंट फॉरगेट, ये शो आपकी मैसेजेस के बिना अधूरा है, तो हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: जिंदगी में हमेशा हम खुद की आवाज़ बन जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये भी रियलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि प्यार में भी आपको किसी की आवाज़ बनना चाहिए। और दिल की आवाज़ जब बाहर निकलती है तो ऐसे में प्यार की सदा ही निकलती है। एंड हम तो चाहते हैं ही कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आप प्यार की दुनिया में और खोए रहे। एंड जो फीलिंग्स उभर उभर कर सामने आ रही है उनको प्लीज़ दबाइएगा नहीं, एंड जस्ट लेट इट फ्लो, एंड बस फ्लो में बहते चले जाइए। एंड इमोशंस के साथ साथ आपका प्यार भी बहता चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप प्यार भरे नगमे सुनते हैं, जो आपका दिल ज़ोर से धड़कता है, वो प्यार नहीं तो और क्या है। और चलिए उतने ही प्यार से हम एक बार फिर से मुलाकात कर रही हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर इवनिंग लाउंज चल रहा है दिव्या के साथ टिल 9 PM। सो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, डेडिकेशंस ऑन 5499 1294। हमारा साथ आप लोग ऐसे ही देते रहिएगा और उतने ही प्यार से हम भी आपके मैसेजेस का इंतज़ार करते रहेंगे। और हमने कहा ना कि जब किसी से प्यार होता है तो वो इंतज़ार का नाम ही प्यार होता है, जहाँ पर बस राह ताकते रहते हैं। और ऐसे में हम भी आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और हमें सुनते सुनते काश आपका भी मन हो हमें मैसेजेस भेजने के लिए। एंड डू लेट अस नो कि हमारे खूबसूरत और रोमांटिक गीत को सुनने के बाद आप किन किन को याद कर रही हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

बहुत ही अजीब बात है ना दोस्तों कि ये चांद सब कुछ देख पाता है, उसको भी देख पाएगा, उसको भी देख पाएगा और सबको देख पाएगा जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस प्यार करने वाले ही एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रही हैं, बट जब आप

0: आपकी नज़रें चांद पर जाकर टिक जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका महबूब आपको देख रहा है, क्योंकि ये दिमाग में ज़रूर आता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं से किसी कोने में ये चांद को ज़रूर निहार रहा होगा, है ना। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू रियलाइज़ दिस ऑल्सो कि ये कुदरत ही है और कुदरत का करिश्मा जो आपस में प्यार करने वालों को मिला ही देता है। वेल सोचने वाली बात यह है कि जब आपको चांद दिखे तो वाई वेट फॉर टुमोरो, इसीलिए कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अब। और जो खूबसूरत समा होता है इसके लिए कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या पता ये पल कल सेम रहे या ना रहे। इसलिए जो पल आपके सामने है उसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको उठा ही लेना चाहिए। 7:35 टू ऑल दोज हैविंग देयर मील राइट नाउ, इफ़ यू हैव योर डिनर, आपको बना पीछे शुभाहार दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज। साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया आपको। एंड चलिए अभी हम स्टूडियो के अंदर है, ना ही हम चांद को देख पा रहे हैं और ना ही आप चांद को देख कर ये सोच पा रही है कि शायद दिव्या भी चांद को निहार रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम आप हमारी तरफ से ज़रूर कर ही लेना और हम समझेंगे कि चांद को हमने भी देख लिया है। वेल थैंक यू सो मच टॉकिंग अबाउट द मून एंड द चांद, थैंक यू सो मच, हमारे शो में इतना आप लोग चार चांद लगाते हैं, आप लोगों के बिना ये शो अधूरा है और आपके मैसेजेस के बिना ये शो एकदम फीका है। वंस अगेन थैंक यू सो मच दिल से आपको कि आप लोग इतने प्यार से साथ दे रहे हैं एंड वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294। गुड इवनिंग आरजे दिव्या, वेरी लवली सॉन्ग्स विद सलमान एंड कटरीना फ्रॉम कुमार, थैंक यू सो मच कुमार हमारा साथ देने के लिए। एंड साथ में करिश्मा के लिए अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे, जिनके लिए रोज ही डेडिकेशन आते हैं और कहते हैं ना कि प्यार में अगर आपको प्यार को बढ़ाना है सो कॉन्सिस्टेंसी इज द की, और ये कॉन्सिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करेंगे तो ट्रस्ट मी आपका प्यार दिन ब दिन इतना बढ़ता जाएगा कि आप कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए डोंट फॉरगेट, जब भी आपको मेहनत करनी पड़े, आपको प्यार करना पड़े या फिर जिंदगी में आपको जो भी करना पड़े ना, कॉन्सिस्टेंसी इज ऑलवेज द की।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: बिल्कुल दोस्तों, जब किसी को प्यार का वैल्यू या फिर कदर करना नहीं आता है ना, तो इसमें बिल्कुल आपका घाटा नहीं होता है। सौदे घाटे का सौदा तो वो लोग करते हैं, इसलिए नेवर नेवर एवर फील कि आपसे शायद कोई गलती हुई होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को जब बेशुमार बेमतहा हद से ज़्यादा प्यार मिलता है, मोर दैन दे डिज़र्व, तो कभी कभी घाटे का सौदा उनसे हो ही जाता है। और कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, और बस आप कभी कभी दिल पे पत्थर रख कर यू हैव नो चॉइस बट टू मूव ऑन एंड ट्रस्ट मी। जब भी किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो आगे चलकर ऊपर वाला ज़रूर उनको कंपेंसेट करता है, और यू टेंड टू फाइंड योर मिस राइट और मिस्टर राइट एट द एंड ऑफ द डे। चलिए, इट्स ऑलरेडी 7:48, बढ़ते हैं आपके कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर। एंड यहाँ पर आप कहती हैं, हाई डियर, इट्स वैष्णवी फ्रॉम पोतोपीमा, आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माई लिटिल बेबी बॉय, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ। दैट्स अ ब्यूटीफुल गाना, लेकिन अनलकीली वैष्णवी अभी के लिए हम ये गाना नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये हमारे शो में इतना भी फिट नहीं होता है, और अभी के लिए बस प्यार के गाने चल रहे हैं। आई नो इट्स अ लव सॉन्ग, बट अभी के लिए शो में फिट नहीं होगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट शो के लिए हम इस गाने को ज़रूर कंसीडर करेंगे। और साथ में नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर लोट्स ऑफ लव फ्रॉम मामा एंड पापा कुशल, एंड लोट्स ऑफ लव फॉर रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच वैष्णवी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एंड चलिए, यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे, नेक्स्ट गाना टू मामा कविता, पापा आनंद, हबी केशव, एंजॉइंग द सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड यहाँ पर आप कहती हैं, नमस्ते दिव्या, आई एम टीना फ्रॉम शामुनी, इफ़ यू कैन प्लीज़ प्ले द सॉन्ग तुझे देख के दिल मेरा फ्रॉम द फिल्म जंजीर, प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग टू शिवम तेजस्वरी एंड विमला बबीता, थैंक यू सो मच। एंड चलिए, प्लीज़ प्लीज़ नोट कि हम यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, बट फॉर श्योर जो भी गाने आप भेज रहे हैं जो हमारे शो में फिट होता है, उसके हिसाब से हम ज़रूर आपके गाने को चलाएंगे। फिलहाल के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना स्पेशली आप लोगों के नाम।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: such a beautiful mashup और हर एक गीत में इतनी feelings भर भर के हैं कि क्या कहें, ये feelings इतने खूबसूरत होते हैं कि इसके बारे में describe नहीं किया जा सकता। जितना आप इसको महसूस करें ना, उतना ही आप अच्छा महसूस करेंगे। एंड जो फील गुड वाला फैक्टर है वो प्यार में बहुत ही ज़रूरी है और लाइफ में भी। तो चलिए, आई जस्ट होप आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिल पा रही हैं इन गीतों के जरिए, एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने को भी मिल रहा है, एंड यू जस्ट बूस्टिंग अप योर एनर्जी फॉर टुमोरो, क्योंकि कल बैक टू डेली रूटीन, आपको काम पर जाना है, सुबह सवेरे जल्दी उठना है, एंड सेम सेम रश वाला टाइम। और हमेशा हम कहते हैं ना कि इवनिंग्स होते हैं बहुत ही स्लो, ताकि आप थोड़े से रुक जाओ, ठहर जाओ, और इस ठहराव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को भी थोड़ा सा वक्त दें। चलिए, रात्रि के 8:12 हो चुके हैं, एक बार फिर से दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज। थैंक यू सो मच गाइज आपके इतने सारे मैसेजेस के लिए। यस यस, आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं। ये ना सोचें कि हम अभी के लिए डेडिकेशन नहीं करेंगे, और आपको हम बता देते हैं कि कुछ गानों के बाद ज़रूर ज़रूर हम बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की ओर जो आपने भेजे हैं बहुत ही प्यार से ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.

was a beautiful gana from the movie Evil Returns, Mahalakshmi Iyer की आवाज़ में. और उनकी आवाज़ में तो हमेशा जादू ही जादू है. जब भी उनकी आवाज़ में कोई गाना सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में ही पहुँच चुके हैं. वैसे उस दुनिया के बारे में बात करें तो उस दूसरी दुनिया का नाम है प्यार का दुनिया. एंड आई जस्ट होप कि आप भी इस प्यार के दुनिया में ज़रूर खोए हुए हैं. एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इस प्यार को सप्रेस ना करें, बल्कि आप प्यार को हमेशा एक्सप्रेस करना करते रहना चाहिए. चलिए, इट्स ऑलरेडी 8:30. आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे. एंड यहाँ पर आपने हमें मैसेज भेजा है, हाई दिव्या, वुड लाइक टू डेडिकेट द ब्यूटिफुल सॉन्ग तन्हा जिया ना जाए फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी टू माई बेबी विहान. आपके हस्बैंड हैं आकाश, मॉम श्रद्धा एंड टू ऑल एंटायर गुलाब फैमिली ऑफ कांजाबल. एंड वेरी स्पेशल बुक हाउस टू यू दिव्या एंड टू द एंटायर रेडियो मस्ती टीम. कीप स्प्रेडिंग द लव, म्यूजिक एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. एंड वैसे आपका ये मैसेज पढ़ के हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगा. एंड चलिए, आपका नाम शायद हमने मिस कर लिया है, आपने अपना नाम नहीं लिखा, बट आई कैन सी मे बी आपका नाम पूजा है. सो थैंक यू सो मच पूजा, हमारा साथ देने के लिए. नमस्ते, आज जनता

0: और अविनाश अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है. विशिंग देम लोड्स ऑफ लव फ्रॉम द ऑल फैमिली ऑफ मोताई ब्लांश. आपको भी शुभ रात्रि. एंड आप यहाँ पर कहती हैं, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय मॉम सुरेखा नानी लीलावती फ्रॉम देयर लवली डॉटर वर्षा. और साथ में कनेक्टेड हैं गीता सीता बलुराम ऑफ शतुबिरा हैस.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.

RM2 रेडियो मस्ती। आई एम वेरी श्योर कि ये म्यूजिक का बिगिनिंग ही सुनने के बाद आपके दिल में बहुत कुछ हो रहा है, दिल थोड़ा सा मचल रहा है और मे बी अभी तक इस गाने को सुनने के बाद यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टोमैक, ऐसा हो जाता है। दिस इज द ग्रेट क्लासिक ऑफ द इंडियन सिनेमा। वैसे 90s इरा के बारे में बात करें तो वो भी एक दौर था जहाँ पर लोग प्यार को एक्सप्रेस करते थे गानों के जरिए। कभी कभी दिल भी टूट जाता था तो इस हार्ट ब्रेक को भी एक्सप्रेस करते थे गानों के जरिए। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल वन टेकन अप फ्रॉम द मूवी अकेले हम अकेले तुम, उदित नारायण एंड अनु मलिक की आवाज़ों में। एक्चुअली इट्स कुमार सानू एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वन एंड आई एम वेरी श्योर कि इस गाने को सुनने के बाद आप बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक फील करेंगे और शायद इस गाने के साथ बहुत सारी आपकी यादें जुड़ी हुई है।

0: RM2 Radio Musty.
1: बिल्कुल, जो प्यार करता है थोड़े से दीवाने हो जाते हैं, थोड़े से पागल भी हो जाते हैं। अभी दिल का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दिल को तो प्यार बस करना ही आता है। किसी की चलिए, इट्स ऑलरेडी 8:53 एंड इस गाने के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, 7 बजे से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए, अभी के लिए हम जा रहे हैं वापस आने के लिए कल सेम टाइम रात्रि के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच है। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि एंड बाय बाय।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम जी। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है योर लेट नाइट ग्रूव्स। रात धीरे धीरे गहरी हो रही है दोस्तों, और अब वक्त है दिन भर की सारी टेंशन को साइड में रखने का। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अपनी फेवरेट जगह पर कंफर्टेबल हो जाइए और म्यूजिक को अपना दिल तक पहुँचने दीजिए। रोमांटिक मेलोडीज, ब्यूटिफुल मेमोरीज और पॉजिटिव बातें लेकर आई हूँ मैं आपका साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑनली ऑन रेडियो मस्ती।

कभी कभी हमें किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है जिंदगी में, बस एक अच्छा गाना, थोड़ी सी खामोशी और कोई ऐसी आवाज जो दिल को सुकून दे। तो आज रात अपने वरीज को, अपने सारे परेशानी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जो हो गया है उसे जाने दीजिए और जो कल आएगा उसका वेलकम एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कीजिए। ये रात है आपके लिए, आपके लेट नाइट ग्रूव्स पर लेकर आई हूँ मैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो बस सीधे आपके दिल पर लग जानी चाहिए। तो चलिए जी, गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बस यूं ही साथ निभाते जाइए। और अगला गाना खासकर आपके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

लगता है। दिन के शोर के बाद जब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, तब हम अपने दिल की आवाज थोड़ी क्लियरली सुन पाते हैं। शायद कोई पुरानी याद आ जाए, या कोई स्पेशल इंसान याद आ जाए, या किसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर स्माइल आ जाए। लेट द म्यूजिक टेक यू देयर टुनाइट विद लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो।

वैसे दोस्तों अगर आज का दिन आपके लिए इजी नहीं था तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपने आज भी अपना बेस्ट दिया है। हर दिन परफेक्ट नहीं तो हो सकता है ना, और हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग को पॉजिटिव बना तो सकते हैं। सो ब्रीव, रिलैक्स और स्माइल कीजिए और इस ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ अपनी रात को पीसफुल बना दीजिए।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पर नॉक करते हैं, एक मेलोडी और सडनली एक पुरानी मेमोरी आंखों के सामने आ जाती है, किसी का स्माइल, किसी की बात, कोई स्पेशल इवनिंग। म्यूजिक रियली हैज द पावर टू ब्रिंग पीपल एंड मोमेंट बैक टू अस। जी हाँ दोस्तों, तो आज रात मेमोरीज को फील कीजिए, स्माइल कीजिए और एंजॉय कीजिए लेट नाइट ग्रूव्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती के साथ। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके

रेडियो मस्ती के प्यारे प्यारे लिसनर्स, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है ना। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैसेजेस, कॉल्स, एंडलेस वरीज के बीच हम कभी कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो टुनाइट मेक अ लिटिल टाइम फॉर योरसेल्फ, एक कप चाय या कॉफी, फेवरेट म्यूजिक और थोड़ा सा पीस, समटाइम्स दैट इज ऑल व्हाट वी नीड। स्टे कनेक्टेड विद मी गिनिशा ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। और अभी के लिए ये अगला गाना सिर्फ और सिर्फ

आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है जिसके बिना एक गाना भी इनकम्प्लीट लगता है. मे बी आप उनके साथ हो या शायद वो आपसे दूर हैं. बट डिस्टेंस कैन नेवर स्टॉप बी अ ब्यूटीफुल मेमोरी. एक रोमांटिक सॉन्ग कभी कभी वो कह देता है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, कभी कभी वर्ड्स में नहीं कह पाते. तो डेडिकेट कीजिए. जी हाँ, हमारी तरफ से जो अगला गाना हम प्ले करने वाले हैं आपके उस स्पेशल इंसान के नाम. फील कीजिए और प्यार को सेलिब्रेट कीजिए लेट नाइट ग्रूव्स पर.

0: your number one Bollywood station.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है।

0: आज रात एक छोटी सी रिमाइंडर है सिर्फ आपके लिए। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए ना मेरी जान। हर किसी का जर्नी अलग होता है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। आप जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कीप मूविंग एंड ट्रस्ट योर जर्नी। और हाँ, म्यूजिक का साथ रखिए, क्योंकि लेट नाइट ग्रूव्स में रात अभी यंग है, अभी बाकी है। तो चलिए अगला गाना आप दिल से एंजॉय कीजिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

कभी कभी हम किसी को मिस करते हैं ना, लेकिन उन्हें कॉल नहीं करते। कभी मैसेज लिखते हैं और फिर हम डिलीट कर देते हैं। दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते। मे बी टुनाइट का ये जो गाना है इज गोइंग टू से लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो अगर कोई है स्पेशल जो आपके माइंड में अभी चक्कर लगा रहा है, तो क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द मेलोडी एंड लेट योर हार्ट स्पीक टू दैट पर्सन ओनली इन योर थॉट्स।

दोस्तों, हैप्पीनेस हमेशा किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं मिलती है। कभी कभी एक फेवरेट गाना, किसी अपने का मैसेज, एक जेन्युइन स्माइल या रात की पीसफुल साइलेंस, वो भी दिल को खुश कर देती है, सुकून देता है। सो टुनाइट नोटिस द लिटिल ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट यू। बिल्कुल लाइफ को फील कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और पॉजिटिव रखिए। लेट नाइट ग्रूव्स ऑन योर रेडियो मस्ती एंड टू ऑल दोस हु आर वर्किंग, बॉन कुराज टू यू।

रात के इस पीसफुल वक्त में एक बात याद रखिए, जो लोग आपकी लाइफ में जेन्युइनली आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं ना, उनकी वैल्यू जरूर कीजिए। रिलेशनशिप्स सिर्फ शब्दों से नहीं, वक्त से, केयर से और लिटिल एफर्ट से ब्यूटीफुल बनता है। तो अपनों को अप्रिशिएट कीजिए।

उन्हें बताइए कि वो स्पेशल हैं बिकॉज समटाइम्स अ स्मॉल जेस्चर कैन मीन एवरीथिंग टू अ पर्सन। तभी तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गाने जो आपको महसूस करा दें कि जिंदगी में प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है।

आज अगर किसी बात ने आपका मूड खराब किया है तो उस ठोट को अपनी पूरी रात मत लेने दीजिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएटली नहीं मिलता है दोस्त, और हर सवाल का

जवाब आज ही जरूरी नहीं है बिल्कुल कुछ चीजें टाइम के साथ क्लियर होती हैं फॉर टुनाइट जस्ट सिट बैक रिलैक्स एंड अलाउ योरसेल्फ टू एंजॉय दीज ब्यूटीफुल म्यूजिक सिलेक्शंस जो हम लेकर आए हैं खासकर आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती गिनेशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी

वैसे दोस्तों रोमांस रोमांस जो है ना सिर्फ कपल के बीच नहीं होता है. रोमांस एक फीलिंग है अपनी फेवरेट सॉन्ग के साथ, मूनलाइट के साथ, किसी ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ, जी हाँ, या सिंपली अपने आप के साथ पीसफुल टाइम स्पेंड करना भी रोमांस होता है. सो टुनाइट, बिल्कुल टुनाइट, गिव योरसेल्फ सम लव टू. You deserve your own attention, your own peace and your own happiness. And we are here to help you to create your happiness. तो चलिए जी, happiness का नाम हमने लिया और अगला गाना आपके नाम नहीं किया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो चलिए आप enjoy कीजिए, गुनगुनाइए हमारे साथ for the next

कुछ रातों में हम बहुत कुछ सोचते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप्स, सपनों के बारे में, और कभी कभी ओवरथिंकिंग भी शुरू हो जाती है. लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, आपका हर चीज का आंसर टुनाइट नहीं ढूंढना. आज रात को ही क्यों ढूंढना, कुछ थॉट्स को सिंपली लेट गो कीजिए ना. कल एक नया दिन होगा नए पॉसिबिलिटीज के साथ. अभी बस म्यूजिक को आप एंजॉय कीजिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, एंड आई एम श्योर कल का दिन और भी अच्छा होगा.

वैसे अगर अभी आप ड्राइव कर रहे हो सो प्लीज ड्राइव सेफली मेरी जान, और अगर आप घर पर हैं सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, लाइट्स थोड़ी सी डिम कर लीजिए, वॉल्यूम रेडियो का थोड़ा सा अप कर लीजिए, और लेट दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक गाने बिकम द साउंड ट्रैक ऑफ योर नाइट. मे बी टू नाइट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद एनी सॉन्ग दैट आई एम प्लेइंग, एक मेमोरी या सिंपली विद द पीसफुलनेस ऑफ द मोमेंट. लाइफ में कुछ लोग आते हैं और मेमोरीज बन जाते हैं, है ना. कुछ रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और कुछ हमें ब्यूटीफुल मोमेंट्स. तो इस मोमेंट को यहीं पे रोक देते हैं और अगला गाना आपके नाम हम डेडिकेट कर लेते हैं.

तो चलिए जी, आई रियली होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा। दिल से हमने पेश किया कुछ ऐसे गिने चुने गाने खास कर आपके नाम, और उम्मीद करते हैं दैट यू रियली लव्ड इट। सो फिलहाल के लिए किनिशा को आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और लेट नाइट ग्रूव्स में। तब तक के लिए एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर नाइट विद रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: स्पेन के एक दूरदराज इलाके के सरहद ढांचे को मजबूत किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे गैरकानूनी सीमा पार को काफी हद तक रोक दिया जा सके। इससे पहले ही दिन में हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्तों से वहां पहुंच गए थे। पानी में कम से कम 19 लाशें मिली। स्पेनिश डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने बताया कि गृह मंत्रालय के हवाले से अंदाजा है कि 24 घंटों के अंदर 49,000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से मोरक्को से सरहद पार कर गए हैं। अमेरिका ने नए सिरे

से ईरान पर नई पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। एक व्यक्ति और 5 कंपनियां प्रतिबंध से ताल्लुक रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज कंपनियां मध्य पूर्व में उड़ानों को रद्द कर रही हैं। लंबे युद्ध के बाद विमानन क्षेत्र को दोबारा गति मिल रही थी कि अब अरब मुल्कों में फिर से रुकावटें पैदा हो गई हैं। गजा में हमास के लिए समझौता। गजा की शांति परिषद ने कहा कि हमास ने एक रोड मैप की मंजूरी दी है जिससे गजा से इजरायली ताकतें

स्थल पर मौजूद थे। सभी मरहूमों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक जांच शुरू की गई है। स्पेन और फ्रांस के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगी जंगल की आग फिलहाल काफी हद तक काबू में आ गई है। हालांकि दोनों मुल्कों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि आग ग्रीस और इटली की तरफ भी फैल सकती है। तेज हवाओं और भयंकर गर्मी की वजह से ग्रीस से लेकर यूके तक कई जगहों पर लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं आग को और तेज फैला सकती हैं। इन हवाओं की वजह से आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रीस की मुख्य भूमि के साथ साथ क्रेट और पेरिस द्वीपों पर लगी आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। एक वृहद विस्थापन कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में मानसूनी बारिश की वजह से अनेक राज्यों में नुकसान हैं। आसाम में बाढ़ की वजह से 78 लोगों की जान गई है। आने वाले 3 दिनों के लिए भी तेज वर्षा का अनुमान है।